का पुकारा करते थे तो वो उनके कलाम को मुस्तरद कर देंगे और उनसे कहेंगे कि तुम तो झूठे हो। और उस दिन अल्लाह के सामने सर निगुं हो जाएंगे और जो तूफान वो बांधा करते थे सब उनसे जाता रहेगा।

उसे ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

Righto. In the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, mere khud assalamu alaikum ali Pakistan janab se mukhatib aapka host aapka dost DJ Sahil signing hai. Aur janab kaise hain aap tamam log ki din theek thaak hai wane fit hain mazze mein hain khoob enjoy kar rahe hain apni zindagi ko. It's 8 to 4 on the dial, ladies and gentlemen. 8 bajkar aur theek 4 aur ye hote hote 5 minute ho chuke hain. Today is 9th of October 2026. Ab se leke thi kafi der tak mera aapke saath rehne wala hai. So khoob sari masti and lots of fun only on FM 101. So janab kaise hain aap tamam log? Khairiyat se hain? Zindagi kaise guzar rahi hai aapki? Definitely achi guzar rahi hogi. Long time no see, ha? पूरे हफ्ते बाद जो मुलाकात हो रही है मुझे तो इतना इंतजार होता है ना, इतना ज्यादा मैं बेचैन होता हूँ कब फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा मैं शो करने जाऊंगा. क्या आपको भी ऐसी, जाहिर है आपको तो मोहब्बत है ही हमसे, हम हमारे प्रोग्राम का बहुत शौक से सुनते हैं, हमें मालूम है स्पेशली हमारा 8 to 11 होता है सैटरडे संडे. होपफुली आज भी आप हमारे शो को इंजॉय करेंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम आपके लिए लाना तो रिबेका ने है, लेकिन कुछ रास्तों के इशू लग रहे हैं जिसकी वजह से आई हैव नो आइडिया कि वो आती हैं कि नहीं आती हैं. लेकिन Guys, मैं आ चुका हूँ क्योंकि आपको पता है कि जो बाइक वाली पार्टी होती है ना वो फॉरन कहीं भी एडजस्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैंने बाइक रखे हुए हैं कि जी जहाँ आना जाना और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगे कि रास्तों का इश्यू बनेगा तो आप वहाँ पे बाइक इस्तेमाल करें. सबसे पहले टुडेस बेस्ट थिंग इज दिस कि मैं सुबह मॉर्निंग में आज एक विश करने वाला हूँ. एंड विश क्या होगी जी? विश होगी आज की क्या, ये तो भाई अब मैं बता दूं आपको. आपको मालूम है कि कल मैम सदफ का बर्थडे था, बहरहाल सेलिब्रेट हमने रात को कर लिया उनकी तरफ जाकर, लेकिन चूंकि ऑन एयर मैं अभी आया हूं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से अभी जो है आप लोगों के सामने विश किया जाए. तो मैम सदफ को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक. मैम हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू एंड मे यू हैव मेनी मेनी मोर. बहुत सारी दुआएं नेक तमन्नाएं तमाम लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से मैम सदफ के लिए. होपफुली आप लोगों ने बहुत मैसेजेस किए होंगे, बहुत ज्यादा जो है वो कॉल्स की होंगी मैम को, आप लोगों ने बहुत ज्यादा विश किया होगा. और कल मैम लग भी बड़ी अच्छी रही थी, आपको पता है भाई बर्थडे होता है ना स्पेशल डे तो इंसान त्यार शार दर सही वाला होता है ना. तो मैम के लिए बहुत सारी दुआएं और उनको विश करते हैं, चलेंगे आके 1 2 3 go.

राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आठ बज के 19 मिनट हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं FM 101. और अगर आपकी कॉल्स आ रही हैं तो मैं बिल्कुल किसी मूड में नहीं हूँ आज कॉल्स लेने के, क्यों मुझे पता है वही किसी बड़ी बात की रिबेका कब आएंगी, कब करेंगे साथ शो. तो भाई मैं क्यों बताऊँ आपको, आपको नहीं पता सैटरडे संडे में इकट्ठा शो करते हैं सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक. अच्छा मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो मे बी हो सकता है हम 9 से 11 कर लें, लेकिन ये अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है. आज हम बात करेंगे रात को और इस बारे में, तो डेफिनेटली सुबह यहाँ तो 8 बजे हम होंगे या 9 बजे होंगे तो आपको पता चल जाएगा. चलें जल्दी से देखें, अब आप उठ चुके हैं तो जाके देखें आपके टेरिस की लाइट जल रही है. बिल बहुत ज्यादा आते हैं, बिल बचाएं अपने लिए, बिजली बचाएं अपने लिए, काम के लिए. और सुबह उठ के सबसे पहले काम किया करें कि आप एक सादा पानी जो है ना ग्लास एक वो पिया करें, सादे ग्लास का कह रहा मैं, ठंडा वाला नहीं, नॉर्मल पानी जो होता है ना वो वाला आपने एक ग्लास लाजमी पी लेना है सुबह उठकर, ताकि आप बिल्कुल ठीक रहे. और पता है सुबह पानी पीने से आपका स्टमक ठीक रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये इस वक्त आज की एक अच्छी सी टिप थी जो कि मैंने आपको दी. और अब मैं आपको लेके चलूंगा एक और गाने की जानिब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुबह सवेरे आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो और इतनी ज्यादा बातें आपसे की जाए. सो हियर वी गो, जो गाना मैं प्ले करने जा रहा हूं आपके लिए वो है कौन सा.

0: Tune into the one above FM 101. One FM.
1: This is FM 101.

Alright जी, welcome back once again. कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक हैं? जो कि अभी भी उठे उन्हें कहेंगे गुड मॉर्निंग, मुझे बहुत नींद आ रही है आज, तो बहुत नींद आ रही है आज. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सर्दियों वाला स्टार्ट हो चुका है, जब सुबह उठा नहीं जाता. क्या मेरी ना नींद पूरी नहीं होती, मेरा क्या होगा? क्या भी कर लूंगा मैं, नींद पूरी नहीं होगी तो. नींद पूरी मेरी हो नहीं सकती. मेरी रूटीन ऐसे ही है कि मुझे जो है वो बहुत सारे काम करने होते हैं. बहुत काम करना भी जिंदगी में, बड़ा पैसा कमाना. तो मैं यही कहता हूँ, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ, भाई पढ़ो, पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है. पेरेंट्स को भी मैं यही कहता हूँ, द बेस्ट थिंग यू कैन गिफ्ट टू योर चाइल्ड इज ओनली द एजुकेशन. अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे जाते हैं, आप समझे अपने बच्चों की लाइफ बना, अपने बच्चों को इतना पैसा छोड़ के जाने का कोई फायदा नहीं. उनको पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाए, पैसा उनके हाथ की मैल है, वो यूं कमा लेंगे. ये बहुत जरूरी. अब तो AI आ चुका है, उसने वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया हम सबका. आपको पता है कितना ले ऑफ चल रहा है आजकल कंपनीज में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इतना ले ऑफ हो रहा है, इतने ज्यादा डाउन साइजिंग हो रही है बिकॉज ऑफ AI. कि AI एक बंदे सारे बंदों का काम, 30-30 बंदों का काम एक अकेला कर ले. अभी यहाँ बैठते हैं हम लोग, बनाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, वहाँ AI जो है वो एक सेकंड के अंदर यूं करके दे देता है. तो मतलब कहने का मकसद है कि अब बहुत दुनिया में डिजिटलाइज हो गया सब कुछ, बहुत तरक्कियाँ हो चुकी हैं. तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दें, कुछ नहीं तो कम से कम AI की क्वालिफिकेशन तो लाजमी होनी चाहिए, बच्चों को नोहा होनी चाहिए. छोटे बच्चों को भी जो है वो देखें, बहुत सारे डिजिटल कोड्स वगैरह के, कोडिंग के जो है वो कोर्स वगैरह आगे चीज़ें आ गई, वो लाजमी करवाएं, बहुत ज़रूरी है. तो बातें भी होती रहेंगी, ये सिलसिले भी चलते रहेंगे. अब जुगाना मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ, मैं कुछ मिक्स अप म्यूजिक आज प्ले कर रहा हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा मिक्स अप, पुराना नया इंग्लिश उर्दू सब सब वाले प्ले कर रहा हूँ मैं. उर्दू. सो हियर वी गो, द ट्रैक इज

0: This is FM.
1: राइट जी, दिस इज एफ 101, 8:44 हुए चाहते हैं। और जनाब, इस जिंदगी की भागम दौड़ के अंदर जो है वो यकीनन हमारा मेंटल पीस जो है ना वो तबाह होके रहेगी। जिंदगी में दो चीजें सबसे ज्यादा जो है ना वो इंसान की जरूरत होती है, एक होता है आपका फाइनेंशियल सक्सेस और एक होता है आपकी मेंटल पीस। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं है तो डेफिनेटली आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर आपके पास मेंटल पीस ही नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं है। दोनों चीजों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में अगर बात करें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ पैसा हमें सिक्योरिटी जो है वो देता है, बेहतर लाइफस्टाइल और अपने ड्रीम्स पूरे करने का पूरा मौका जो है वो हमें मिलता है। पैसा हो तो हम अपनी और अपनी फैमिली की जरूरियात भी बेहतर बनाते हैं, उसे बेहतर तरीके से पूरी कर लेते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अब वो वाली बात ही नहीं कि भाई पैसा नहीं होगा तो कोई सुकून होना चाहिए, नहीं भाई, पैसा होना चाहिए, आपके पास आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये सक्सेस बहुत जरूरी है। मेंटल इसकी बात करें, अगर आपको जहनी सुकून चाहिए आपको, तो वो भी आपकी लाइफ में उतना ही जरूरी है जितना फाइनेंशियल सक्सेस है। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत है, लेकिन नींद सुकून की नहीं है, दिमाग हर वक्त परेशान रहता है और अपनों के लिए वक्त ही नहीं होता, तो फिर ऐसी सक्सेस का क्या फायदा। आप मुझे खुद बताएं, आपकी देखिए, अब एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इससे मिसाल ले लें। कल भी पता नहीं क्या बात हो रही थी, तो हाँ कल मैम सदफ के घर पे हम थे रात को, तो वहां ये बात हो रही थी कि इंसान की जिंदगी में, और ये बात मेरे ऑफिस में भी दोपहर में हो रही थी, तो वो बस वहीं से निकला कि अगर आपके पास सेहत नहीं है आप कुछ खा ही नहीं सकते, आपको डिजीज इस तरह के हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके पास करोड़ों रुपया भी है तो आपके पास क्या फायदा, जब आप अपनी जात पे नहीं लगा सकते, अपनी सेहत पे लगाने का फायदा नहीं है, आपको वो कोई काम नहीं दे रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका मेंटल पीस, आपकी सेहत है, आपके अपना अंदर है, वो बहुत जरूरी है। फिर वो सिक्योरिटी जो आपने रखी हुई ना पैसे की सूरत में, वो काम भी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, आप अपनी सेहत की फिक्र करें, अपने ज़हनी सुकून की फिक्र करें, छोड़ दें दुनिया में, सुबह उठकर ये मत सोचें उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने ये क्यों बोला, आप ये देखें मैंने क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, ये बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों को ये सोचना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि आप उठ के सुबह ये सोचें आज हमने क्या करना है, ये मत सोचें मेरे साथ आज क्या क्या होगा। ये भी बड़े प्रॉब्लम होते रहे लोगों के, लेकिन आप ये जरूर सोचें कि आज उठ के मैंने क्या क्या करना है, मैंने क्या क्या अचीव करना है, ना कि ये कि उसके पास ये है, इसके पास ये है, उसने ये कर लिया, मैं पीछे रह गया। नो, नेवर, कुछ नहीं होगा इससे, डोंट कंप्लेन। देखें, जब आपके पास काम है तो आप कहते हैं बहुत काम है मुझसे नहीं हो रहा, नो नो नो नो, ये कंप्लेन नहीं है। सबसे बड़ी कंप्लेन वो होगी जब आप ये कहेंगे कि मेरे पास काम नहीं है, वो ज्यादा बड़ी कंप्लेन होगी। रखें अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सोचने का मतलब यह नहीं है कि लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने, लोगों को अगर आप उनके बारे में सोच नहीं रहे तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने उनके बारे में बुरा भी नहीं कहना। अपनी जिंदगी अपने लिए जिए, अपने प्यारों के लिए जिए, अपनी फैमिली के लिए जिए, अपने ज़हनी सुकून, अपनी सेहत की फिक्र करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पता है, अगर लाइफ में आपने ये कर लिया ना, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आप दिमागी तौर पर ठीक हैं, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा कमाएंगे, आपकी सेहत ठीक है, आप चल फिर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर तरीके से आप अपनी सारी सरगर्मियां कर सकते हैं, सारी जो है अपने काम सर अंजाम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त मी माई सेल्फ एंड आई हो जाए आप, कि मैं और मैं, ये जरूरी है। आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने अच्छे अपने बारे में अच्छा सोच रहे, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, वक्त गुजर रहा है बड़ी तेजी से। अभी कुछ दिन पहले की बात लगती है कि मैं बहुत छोटा था, यंग सा 101 पे आया था। अब मुझे यहाँ पे कितने साल हो गए, 28 साल हो गए 101 के, और मुझे 28 साल हो गए 101 के साथ, तो वो 28 साल मेरे प्लस हो गए, तो मैं अब सिर्फ 28 का नहीं होऊंगा। लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई है, और अभी मुझे लगता है कि शायद मुझे इस बारे में यूं करना चाहिए था, ये मेरे लिए बेहतर था, मैंने किसी के पीछे ये काम खराब कर दिया, वो आज मुझे रिग्रेट रहता है या मुझे ऐसा फील होता है। तो जो हो गया हो गया, आप अपनी जिंदगी को ऐसा मत गुजारें, सीखना चाहिए ना इंसान को। अगर मुझे ये तकलीफ हुई है, मैं चाहूंगा कि अगर मेरे से अच्छी बात आज तक पहुंच सकती है, ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो भाई मेरे सेहत पे कोई फर्क, मैं वही कह रहा ना, अपने बारे में सोचें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं बैठ के आपको अच्छी बात बताऊंगा, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा और डैम केयर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये जरूर फिक्र करूंगा कि मैंने यहाँ से उठ के भी जाना तो मैंने क्या करना है, मेरी जिंदगी अब क्या बेहतर है। तो अपने लिए, अपने अपनी जात के लिए बेहतर सोचें, किसी को तकलीफ दिए बगैर तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कोविड के बाद से, जो महंगाई का हिसाब किताब पूरी दुनिया में हो चुका है, अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं, एक जॉब से लोगों का काम नहीं होता, लोगों को दो दो तीन तीन जगह काम करना पड़ रहा है, घर में बाकी लोग भी मिलके काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा आप अंदाजा लगाएं कि आप ज़हनी तौर पे भी बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, तो इन चीजों को बेहतर करना बहुत जरूरी है। 8:50 हो चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे, खूब सारी मस्ती, खूब सारे फन के साथ, ओनली ऑन FM 101 के साथ। तो रहना आपने हमारे साथ साथ, एक दफा फिर से जाते दिखाऊंगा वो लोग, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। कल से मुझे पता है मलाइका, मुझे इतने मैसेजेस लोगों के आए कि हमने मैम सदफ को विश करना था तो मैम सदफ को विश हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा फोन नहीं लग रहा या मैसेज नहीं पहुंच रहा। और ज़ाहिर है मैम सदफ जो है उनकी सोशल मीडिया जो लाइफ है वो बहुत ही पर्सनल वो है, तो मैम इतना ज़्यादा उसको वो नहीं करती, तो उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर मैसेजेस हमें आ रहे थे कि ये लोग क्लोज हैं बताएंगे। तो उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने FM 101 की इस बेहतरीन सी सेलिब्रेशन को भी याद रखा और मैम सदफ की बर्थडे को भी याद रखा, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बस यही कहूँगा कि मैम सदफ को हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वंस अगेन। बहुत सारे लोग ऐसे मैम जिन्होंने अभी आपको विश नहीं किया, भूल गए थे, आपको विश करेंगे वो, तो मैं आपको बता नहीं रहा, उनका नाम नहीं बता रहा। भारत जी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। जाते जाते जो गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ वो है जनाब कौन सा वाला, कौन सा गाना है जी? Alright, to the track which I'm going to play for you guys, it's really super by Fusion Band and the track is Deewane Chale Jab Saath. Enjoy kijiyega, apni dua mein shamil rakhiyega. This is DJ Sahil signing out. Allah Hafiz, Allah Nigeban, and I'm off.

0: check. It's 9:30 a.m.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: पेपर कार्ड है?
3: है तो फायदा है.
4: पेपर है
2: तो ऐड टू कार्ड है.
4: पेपर है
2: इन स्टोर ऑनलाइन एंड एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे.
5: पेपर कार्ड है?
3: है तो फायदा है.
4: पेपर है
2: तो ऐड टू कार्ड है.
4: पेपर है
2: इन स्टोर ऑनलाइन एंड एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे.
6: पेपक आज ही अपने बैंक से बनवाए.
5: पेपक कार्ड है?
3: है तो फायदा है.
4: पेपक है
2: तो ऐड टू कार्ड है.
4: पेपक है
2: इन स्टोर ऑनलाइन एंड एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे.
5: पेपक कार्ड है?

Assalamu alaikum, assalamu alaikum. You are just Rebecca Abdul saying a very warm good morning to all listeners of FM 101. Umeed karte hain aap tamam sunne wale honge khair aur afiyat se, apne apne chahne walon ke saath honge, guzar apni zindagi ke tamam lamhat, zindagi ke har lamhe ko jee lijiye, hanste muskurate, khushiyan bante, khushiyan samete hue ek naya din, nayi khushi, nayi muskurahat, is yaqeen, is bharose ke saath ki aaj ka din bhi zabardast guzarne wala hai. अगर आप मेरी तरह भी एक हॉस्टल से गुजर के आ रहे हैं और आप जब ड्राइव करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सुबह में मिल जाए तो अच्छा, एक अजीब सी ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक अजीब सा ही पैनिक क्रिएट हो जाता है कि आप घर से टाइम पे निकले हैं और आपको जो है वो ट्रैफिक मिल गई है और वो ऐसी ट्रैफिक है जो ठीक ठाक वाली ट्रैफिक है और आप कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है और आपके दिमाग में आ रहा है गॉड, अभी तो पेट्रोल भी डलवाना है, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या होगा. सोचे ज़िंदगी में ये वक्त भी आना था, मतलब बात यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म रह जानी थी. खैर जनाब, अगर आप ड्राइव करते हुए मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे कहेंगे ड्राइव वेरी वेरी केयरफुल एंड हैव अ वेरी सेफ जर्नी अहेड. अपने साथ उन लोगों का ख्याल रखिएगा जो रोड पर मौजूद है. इसका मतलब है सुकून से, तसल्ली से ड्राइव करने, एनी को छेती नहीं पड़ी हुई. देर हो गई ना, मुझे देर हुई, कोई मसला नहीं है. देर सवेर ज़िंदगी का हिस्सा है, इट्स ब्यूटी ऑफ लाइफ. अब आप देखें, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मलाइका जैसी खातून है ना, जैसे मैं जैसी एंटर हुई ना, मलाइका बैठी हुई थी, तो इसकी मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसने जो गाना लगा दिया था ना ब्रेक के बाद, अल्लाह मेरा तरा निकाल दिया इसने ये गाना लगा के. अब इतनी प्यारी है, कहती ये हम पंजाबी गाने सुनते हैं ना. मैंने कहा बेटे तुम एक पंजाबी से बात कर रही हो, एक्सक्यूज मी. हाँ पंजाबी पंजाबी आमने सामने हो गया था. ये वाला गाना नहीं ना पंजाबी सुन रहा, पंजाबी दूसरे वाला गाना सुन के. खैर जनाब, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग और हो सकता है कि आज जो है वो काम का आपके वर्किंग डेज में लास्ट वर्किंग डे हो और उसके बाद सैटरडे संडे इज अ छुट्टी का दिन और छुट्टी का दिन आपने बहुत से प्लान्स किए हुए हैं. अच्छा, मैंने इसे बहुत से कम लोग देखे हैं जो छुट्टी का प्लान उन्होंने किया होता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक जो है वो अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे होते हैं, वरना मतलब सोते हुए आराम करते हुए गुजर जाता है. मैं खुद प्रेफर करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ आराम करना. ज़िंदगी में जो पेस आपको चाहिए ना, उसी पेस में चलें. यानी अगर आपका दिल चाह रहा है कि ज़िंदगी को स्लो पेस में लेकर चलें, सो रफ्तार ज़िंदगी को चलाएँ, तो उसी रफ्तार से चलाएँ. अगर आपका दिल चाह रहा है कि आपकी ज़िंदगी की जो रफ्तार है वो तेज़ होनी चाहिए, तो तेज़ मतलब लिटरली 100 की स्पीड में लेकर चले. बट डू वट योर हार्ट वॉन्ट, वो करें जो आपका दिल चाहता है, जो आपका मन कर रहा है. ऐसा नहीं है कि उसने ये कहा, उसको ये चाहिए. आप दुनिया में लोगों को खुश करने नहीं आए, लोग आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे. किसी से आप पूरी उम्र किसी के लिए कुछ करते रहे ना, आप एक दिन उसको कुछ नहीं, उसके लिए फेवर नहीं करेंगे ना. जैसे वो एक बात मेरे दिमाग में मुझे बहुत पसंद है, किसी को आपसे पैसे चाहिए, आप देते रहें देते रहें देते रहें देते रहें, 5 बार देंगे, 6ठी बार हो सकता है आपके पास नहीं हो, आप नहीं देंगे तो दिल फील लाइक इसने तो देना ही नहीं. और वो शख्स जो 5 बार जिसे नहीं दिए, 1 बार देगा ना, वो उनका प्यारा हो जाएगा. दैट्स हाउ पीपल डिज़ाइन, लोग ऐसे ही डिज़ाइन हुए हैं. आई डोंट नो व्हाई, इफ़ समबडी डज गुड टू यू, बी थैंकफुल टू देम. कोई एहसान तले आने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू बी थैंकफुल टू दैम कि एटलीस्ट कोई आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा. मतलब अब तो ये दौर आ गया, अब तो ये वक्त आ गया है कि अगर कोई आपके साथ, मतलब आपको ये कह देना कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो आप शुक्रिया करें कि कोई आपको ये अल्फाज भी कह रहा है. आप उनको थैंक यू करें कि कोई है जो आपके इर्द गिर्द इतना सुकून भरे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है, आपको वक्त दे रहा है. लोगों के पास वक्त नहीं है बात करने के लिए भी, लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते, कहते सॉरी वी डोंट हैव टाइम. एंड इफ समबडी हैव टाइम फॉर यू, आप उनके पास बैठे अपने दिल की बात करें और ज़िंदगी को खूबसूरती से जिएं. आप सभी सुनने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक.

0: वेलकम बैक वंस अगेन सर, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया एफएम 101 को ट्यून इन करने के लिए. आप बताएं, अगर कल आपकी सैलरी डबल हो जाए, जो भी एक्स वाई जी सैलरी आपकी, 50,000 है तो लाख हो जाए, 5,000 है तो 10,000 हो जाए, 5 रुपए है तो 10 रुपए हो जाए, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? मलाइका, तुम्हारी सैलरी डबल हो जाए, तुम सबसे पहले क्या करोगे? शॉपिंग करोगी? उफ अल्लाह, इस चीज से लड़कियां ना जो है उन्होंने सब लड़कियों को बदनाम किया हुआ है कि लड़कियां शॉपिंग करती रहती हैं. कोई इतनी शॉपिंग नहीं,
1: बंदा शॉपिंग भी करे, शॉपिंग करे, लेकिन
0: हाँ,
1: शॉपिंग करनी भी जरूरी है क्योंकि जरूरत की चीजें भी लेनी
0: है. हाँ, तो तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी तो तुम सबसे पहले शॉपिंग करोगी, कपड़े खरीदोगी. उफ अल्लाह, तुम लड़कियां ना, माय गॉड, क्या करती हो. देखिए जी, मैं तो शॉपिंग तब करती हूँ जब मेरे पास पैसे होते हैं, क्योंकि अगर मेरे घर में कोई सुन रहा है तो कहेंगे और देर जाके झूठ बोल रही है रुबैका. देखिए मेरा क्या, अच्छा ये नहीं, मैं इस पर तो हम बात करेंगे ही, और मैं चाहूँगी कि आप कॉल करें, आप भी अपना फीडबैक दें. जो भी आपकी एक्स वाई जी अमाउंट है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं. आपने ये बताना है कि अगर आपकी सैलरी डबल हो जाए तो आप क्या करेंगे. आई डोंट नो कॉल्स नंबर चल रहा है या नहीं चल रहा. अगर तो हमारा नंबर चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चल रहा तो फिर क्या ही हो सकता है. वर्किंग में है नंबर? हाँ, वर्किंग में है, सीम्स लाइक के वर्किंग में है. अभी नहीं, 10 बजे के बाद जब हम न्यूज़ के बाद वापस आएंगे तो लाइव कॉल के सिलसिले को प्रोग्राम में शामिल करेंगे. मैं कोशिश करूँगी कि जो न्यूज़ का टाइम है उसमें मैं अपने फेसबुक के पेज पर लाइव भी आऊँ. रुबैका अब्दुल आर्टिस्ट से मुझे नहीं पता, मुझे कितने साल हो गए, 8, 7, 8, 9, 10 साल हो गए मेरा जो पेज है फेसबुक का, कभी कोई चीज़ डिलीट नहीं हुई. मैंने ऐसे कभी ना कोई वीडियो बनाई है, ना मैंने ऐसे कभी कोई बात की है जिसमें वायलेंस को या गलत चीज़ को प्रोवोक किया जाए. आई डोंट नो क्या किसी ने रिपोर्ट किया है. मैंने आज से 3 हफ्ते पहले लाइव एक वीडियो बनाई थी 101 के, हम यहीं पर स्टूडियो से बनाई थी, वो मेरी वीडियो रिमूव हो गई है. एंड आई एम सो कंसर्न्ड. इट्स नॉट अबाउट, बिकॉज मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं चीज़ों को बहुत केयरफुली लेकर चलती हूँ, और मुझे बड़ा हैरान, मैं बड़ी हैरान हूँ. मैंने कहा ये कौन है भाई, कौन है जो रिपोर्ट कर रहा है मेरी फेसबुक को. कैसे ना किया करें, क्या करते हैं आप लोग, आप लोगों के लिए बनाती हूँ. आप लोग कहते हैं लाइव आया करें, मैं लाइव आ जाती हूँ. मतलब आप लोग इतनी मैं मानती हूँ, इतनी मैंने अपनी अम्मी अबू की मानी होती ना, तो आज मैं कहाँ से कहाँ बैठी होती. 0549202540 इज द नंबर. आप कॉल कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं. 10 बजे के बाद आपकी कॉल्स के सिलसिले को प्रोग्राम में शामिल करूंगी. नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 0519202540 एंड 111001 इज द नंबर. आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं. आई डोंट नो ये नंबर वर्किंग में है या नहीं, पता अदर नंबर जो मैंने पहले बताया उस पर तो आप कॉल कर ही सकते हैं. आपके ट्रैक्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे. और जनाब, अगर आपकी सैलरी डबल हो जाए सो आप क्या करेंगे? मेरे पास, मेरे, इफ आई बिलीव के अगर मेरी सैलरी जो भी एक्स वाई डबल हो जाए तो मैं क्या करूँ, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ. लेकिन लाइव फेसबुक के सेशन में आपके साथ बात करते हैं, एक ज़बरदस्त सा ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आपकी कॉल्स के सिलसिले को प्रोग्राम में शामिल करेंगे. कहीं नहीं जाना, सुनते FM 101 जस्ट फॉर यू विद रुबैका अब्दुल.

0: फायदा दे बेपाक आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: दिस इज FM 101.1
2: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: यार हमने ऑनी बेइज्जती सुन ली, अब क्या कर सकते हैं।
1: चले मैं अपना नाम बता देती हूँ, वैसे आपको तो पता ही होगा
0: ऑफ कोर्स।
1: पर लिसनर्स को बताती हूँ,
0: हाँ,
1: माय नेम इज ज़ैनब फ्रॉम चकवाल।
0: चकवाल जहांगीर, रेवड़ी बड़ी मशहूर है, ऐसे ही है।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: ज़ैनब क्या हाल है, खैरियत
1: हाँ,
0: से?
1: अभी वहाँ की रेवड़ी मशहूर है और वहाँ के लोग भी बहुत मशहूर हैं।
0: अरे वहां के लोग बहुत प्यारे हैं, मैंने बड़ा काम किया है चकवाल जाके, बड़े प्यारे लोग हैं, मेहमान
1: सही बात
0: नवाज,
1: है ना,
0: छोटी छोटी खा के आते हैं हम जब भी जाते हैं।
1: आए ना फिर हमारे घर भी कभी।
0: जरूर, जीती रहे हैं। ज़ैनब क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हैं, जिंदगी कैसी गुजर रही है?
1: कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल हमारी शादियां आ गई हैं, अभी मतलब हफ्ते से शुरू हो रही हैं, कल से
0: अक्टूबर,
1: शुरू हो रही है और पूरा मंथ आगे शादियां हैं।
0: मैं बताऊं ज़ैनब, आमतौर पर जो है ये हमारे पाकिस्तान में तो ये समझा जाता है कि जो अक्टूबर और दिसंबर है ना, ये 2 महीने बकायदा तौर पर ऑफिशियली शादियों का सीजन है।
1: यही बात है, वो बोलते हैं ना कि शादी शादी अले अले तो खर्चे मिले साढ़े,
0: हाँ, हम गरीबों के तो वेलों के खर्चे हैं, क्या ही कर सकते
1: यही
0: हैं
1: बात है
0: वो।
1: ना। शादी तो जरी बात है, उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने तो शादी करनी है अपने बच्चों की, तो
0: हमारा
1: हमें तो
0: खर्चा हो
1: वैसे ही,
0: जाएगा।
1: हमारे तो वैसे ही कपड़े जूते नहीं पूरे होते।
0: अच्छा मैं वैसे ज़ैनब इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमारे लिसनर्स भी सुन रहे हैं, मेरा एक प्रॉब्लम शुरू से ही है, एक जोड़ा ले लिया ना, मैं अलग अलग जगह पर जाऊंगी वो एक ही जोड़ा पहनूंगी। आई एम वेरी बैड।
1: अल्लाह,
0: हाँ, मैं नहीं ज्यादा कपड़े, और शादियों वाले कपड़े इतने हैवी होते हैं, इफ समहाउ साड़ीज एंड अ लॉन्ग, वो जो क्या होता है, गाउन्स हैं, वो कितने ही आप बाद में पहन सकते हैं। तो मैं जी झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पास कुछ 4 से 5 ऐसे शादियों वाले जोड़े से ले पड़े हैं, चले 7-8 होंगे, वो मैंने एक बैग में रखे हुए हैं, वो कभी मैं पहन लेती हूँ, वो कभी मेरी सिस्टर पहन लेती है, तो हम ना ऑल्टरनेट डेज में हम दोनों बहनें स्विच
1: वैसे
0: करती रहती
1: अभी
0: हैं।
1: वैसे ये सही होता है ना, दो बहनें हो और वो एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज कर सकती हैं, बट मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे तो भाई है ना।
0: अरे तो एक वही तो बता रही हूँ, अब हम लोग क्या करते हैं, हम दो बहनें, ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास 50 जोड़े हैं, मुश्किल से 6 जोड़े हैं, 3 उसके 3 मेरे, वो मेरे 3 पहनती है, मैं उसके 3 पहनती हूँ, हम सारे
1: सही
0: शादियों के
1: बात।
0: फंक्शन पूरे कर लेते हैं।
1: वैसे मैंने अभी कपड़े लिए हैं तीन,
0: हाँ,
1: हाँ एक जोड़ा लिया है, सिलाई हुआ वो मिक्सी है, वो गाउन बना हुआ बहुत प्यारा है, सिल्वर कलर में है, मतलब बहुत प्यारा है।
0: अरे
1: और एक
0: वाह
1: मैंने सिलाई करवाया और एक मैंने खुद सिलाई की है, तो
0: वाह,
1: जो मैंने खुद सिलाई किया है वो सिल्क कतान में है,
0: सिल्क
1: येलो
0: कतान में
1: कलर
0: है,
1: में है, बहुत प्यारा है वो, बिल्कुल सादा कपड़ा लेके मैंने सिलाई किया खुद, ऊपर से
0: खुद
1: मतलब खुद
0: सिला
1: से
0: है,
1: ना।
0: जरब
1: जी
0: खुद
1: जी
0: सिया है,
1: जी
0: खुद सिया था आपने?
1: हाँ जी बिल्कुल, मैं खुद कपड़े सिलाई करती हूँ
0: वाह, अमेजिंग।
1: अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने अपने अपनी अम्मी के और मतलब कोई भी हो, मतलब ऐसे बाहर के कपड़े वैसे सिलाई नहीं करती, वैसे मैं खुद के कपड़े तो मैं बिल्कुल खुद सिलाई करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, डिजाइनिंग मुझे पता है, बड़ा शौक था फैशन डिजाइनर बनने का, लेकिन जब
1: ऐसे
0: मुझे
1: मुझे बिल्कुल भी नहीं शौक, कसम
0: अरे
1: से बिल्कुल भी नहीं शौक, ये मैंने मुझे जबरदस्ती सिखाई गई ये सिलाई।
0: अच्छा, नहीं, मुझे बड़ा शौक था फैशन डिजाइनर बनने का, लेकिन उस वक्त इतना हमें आइडिया नहीं था, पेरेंट्स को भी नहीं था, किसी ने कहा ये तो बहुत महंगा होता है उस जमाने में, इतना लाखों रुपया लग जाएगा, फिर मैं भी खामोश हो गई, पेरेंट्स भी बेचारे खामोश हो गए, इतने पैसे तो ऑफकोर्स नहीं थे कि तालीम भी दिलवाएं और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी करवाएं। सो अगर
1: ऐसे ही
0: मेरे पास
1: होता है,
0: 4 पैसे होते उस वक्त, मेरे अम्मा पापा के पास बहुत पैसे होते, तो मैं फैशन डिजाइनर ही होती या क्रिकेटर
1: अभी
0: होती
1: कर
0: या
1: ले कोई
0: फैशन
1: बात
0: डिजाइनर।
1: नहीं, कोई
0: अब उम्र कहाँ रही जैनब, छोड़ दो, जख्मों पर
1: बात
0: क्या नमक
1: नहीं। वो
0: रखोगी?
1: बोलते हैं ना कि हर उम्र में इंसान का दिल तो जवान होता है ना, जिस उम्र में चाहे
0: हाय
1: बंदा सीख
0: हाय,
1: सकता
0: क्या
1: है कोई भी
0: ही,
1: काम है।
0: नहीं बस छोड़ दो, रहने दो, उम्र की बात क्या करती।
1: ऐसे
0: मैं,
1: मैं
0: हाँ,
1: आपको सच बताऊं कि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था इसका, मुझे जबरदस्ती, एक इंसान होता है खुशी से सीखता है, एक इंसान का शौक होता है, एक इंसान मजबूरी में सीखता है, और मुझे ना शौक है ना मुझे मजबूरी है, पर फिर भी मुझे सिखा दीजिए।
0: अच्छी बात है, मैंने भी स्टिचिंग करना सीखी है, पूरा जो सलून का कोर्स होता है वो किया है, पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से मैंने अपने सारी चीज़ें जो है ना वो सीख के छोड़ी हुई, छोड़ा मैंने कोई काम नहीं है, तो मैं उसे लाइटर नोट पे कह रही थी, मैं
1: वैसे मैंने
0: शुक्र है
1: किसी
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: मतलब किसी सैलॉन से मतलब ऐसे ना किसी से सेंटर से जाके नहीं सीखा, वैसे मैंने खुद घर में मेरी चची मोबाइल से देख के उन्होंने सीखा था, तो मुझे उन्होंने सिखाया है।
0: वाह,
1: और
0: अमेजिंग।
1: मेरा सबसे ज्यादा जो शौक है ना वो एक है, दो शौक है वैसे, अभी मैं तो पार्लर में भी मतलब सैलॉन में भी काम कर रही हूँ, वो भी मुझे आता है अच्छे तरीके से, और एक जो है अभी कुकिंग, आई लव कुकिंग और बेकिंग, मुझे नहीं पसंद है, दिल करता है मैं हर वक्त किचन में घुसी रहूं, पर इतना
0: वाह,
1: खाना पकाने वाला कोई खाने वाला भी तो हो ना, मैं पकाती रहूं बस।
0: हाँ बेकिंग वाली बात तो आपने बड़ी अच्छी की. जैनब मुझे बताओ, अगर तुम कोई काम कर रही हो, एग्जाम्पल दो, तुम जॉब कर रही हो, जो भी तुम्हारी एक्स वाई जी सैलरी है वो डबल हो जाए या तुम्हारी पॉकेट मनी डबल हो जाए, क्या करोगी उस पॉकेट मनी जो डबल हुई है? क्या खरीदोगी, किसी को दोगी, क्या करना है?
1: वैसे आप ही मेरी, अगर वैसे मैं जॉब तो नहीं करती, अगर मेरी पॉकेट मनी जितनी है और उससे भी डबल हो जाए, मैं उसमें से ना मतलब कुछ लगाऊंगी. जहरी बात है, इंसान की मजबूरी होती है, कुछ चीजें खरीदनी होती हैं, कुछ लगाना भी पड़ जाता है. मैं अपने साइड में पैसे रख के अपने अम्मी अब्बू को उमरा या हज करूंगी.
0: क्यूट ज़ैनब, कितनी प्यारी हो.
1: पता है ये मेरा मतलब खुद का है. अभी मैं आपको बताऊँ कि जहाँ पे मेरा रिश्ता हुआ है ना, तो मेरा फियांसे है, वो अच्छा खासा मतलब वो बोलते हैं ना, खानदान वाले मुझे बोलते हैं कि जैनब तुमने बहुत ऊपर हाथ मारा है,
0: नजर लग जाती है. ना बताया करो, नजर लग जाएगी. अब मैं देखो बड़ी बहनों की तरह, मैं बड़ी बहनों की तरह नजर लग जाती है.
1: हमें नहीं होता, नजर लगती है. एक इंसान हसद से देखता है और एक इंसान की हसद की नजर लगती है और एक इंसान की खुशी की नजर लगती है,
0: प्यार की नजर लगती है. आपको पता है कहते हैं बच्चे को सबसे ज्यादा नजर उसकी अपनी माँ की लगती है. माँ से ज्यादा मोहब्बत को कर सकते हैं औलाद को?
1: हमारे यहाँ बोलते हैं कि माँ की नजर नहीं लगती, लगती है,
0: माँ की नजर प्यार से लगती है. मैंने एक्चुअली खुद ऑब्जर्व किया है, मेरी बहन उसको बहुत प्यार से जब देखती है, नजर लगने का बहुत मोहब्बत से देखती है ना, तो फौरन से उसको कुछ हो ऐसी गिर जाएगी, फौरन से फिर खड़ी हो जाती है, रोने लगती है. तो वो साथ ही कहते थे, देखा मैंने इतने प्यार से इसको देखा है ना, ऐसी कोई चोट नहीं लगती, प्यार की नजर लग जाती है. तो ऐसा होता है. ज़ैनब थैंक यू, जीती रहो, तुमसे बात करके ना हमेशा ही खुशी होती है. थैंक यू.
1: एंड साहिल भाई ने आज हमारी कॉल्स नहीं ली, मैंने वैसे थोड़ी देर बाद बंद कर दी थी, ऐसा नहीं सुना, फिर मैं चली गई थी कहीं.
0: चलो कल लेंगे ना आप लोग की लाइव कॉल्स में और साहिल, ठीक है?
1: फिर सही से उनकी ना इंसल्ट करेंगे.
0: नहीं, हम उनका तंग करेंगे, हम मिलके उनका शरारते करेंगे, ठीक है?
1: हाँ जी,
0: चल जीती रहो. थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू ज़ैनब हमारे साथी. और ये जो शरारती होती है, ये क्योंकि मेरे और साहिल का जो प्रोग्राम है ना, उसकी खूबसूरती ही ये है. अदरवाइज तो हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, जो उनकी उम्र है उसमें रिस्पेक्ट करना ही मेरे पास ऑप्शन है, आई डोंट हैव अदर ऑप्शन. बट यस, आप कॉल कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमसे शेयर करते हैं. 0519202540 इज द नंबर. नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, आपकी कॉल मिल गई है, यकीन करें. ओके, नहीं मिली, मिल गई. हेलो, व्हाट इज गोइंग ऑन? अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा कैसा है?
0: मिसेस सईद आ गई. अस्सलाम, मैं भूल गई थी कौन हमारे साथ कहां से, नहीं कहना था मिसेस सईद.
2: मैं बता देती हूं, मिसेस सईद बात कर रही है न्यू नानाजार रावलपिंडी से.
0: हाय मिसेस सईद, कैसी हैं आप? खैरियत से है?
2: मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो?
0: अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल. मैं, आप जब भी बताती है ना मैं न्यू लालाजार से, तो मुझे याद आ जाता है मेरी सिस्टर ने ना वहाँ पर जॉब भी की हुई है, सेंट मेरीज में.
2: अच्छा, so,
0: हाँ मुझे हमेशा याद आ जाता है, ऐसे लगता है जैसे आप पड़ोस में ही. अब नहीं, अब तो उनको गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी 8 साल हो गए, 8 साल पहले पढ़ाती थी वो. अच्छा, बहुत पुराने हम लोग. मिसेस सईद कैसी हैं आप? खैरियत से?
2: मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा. आप सुनाओ, घर पे सब खैरियत है?
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जिंदगी कैसा सलूक कर रही है आपकी?
2: गुड़िया ठीक है?
0: गुड़िया ठीक है. हमारी बेटी जो है वो 2 बरस की हो गई 7 अक्टूबर को, माशाल्लाह.
2: उसके पीछे पीछे पीछे फिरना पड़ता होगा.
0: मिसेस सईद शरारतें, क्या छोटा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, शरारतें.
2: मेरे घर में है ना 1.5 साल का होने वाला, तो ऐसा मुझे आता है ना कि जब ज्यादा बिस्तरे से 2 दिन उठ नहीं सकती हूँ.
0: मिसेस सईद ऐसा होता है ना. अच्छा एक और भी सीन है हमारे घर में, पता नहीं बाकी घरों में भी ऐसा होता होगा, तो जरूर हमें पता, हमारे घर में सिस्टम थोड़ा उल्टा चल रहा है. मेरी भांजी को ये लगता है कि उसके एक्चुअली अम्मी अब्बू मेरे अम्मी अब्बू हैं, और उसको ये लगता है मैं और उसकी जो अपनी अम्मी है हम उसकी बहनें हैं बड़ी. हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है.
2: सारा दिन पिंजरे में ननिहाल में ही होती होगी ना, ऊपर तो जाती ही नहीं होगी ना.
0: क्योंकि मेरे जो बहनोई हैं उनकी पोस्टिंग एक और शहर में है, और जो मेरी बहन के इन-लॉज हैं वो होते हैं बन्नू में, और उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो पंजाब में है. अब आपको समझ में आ रहा होगा ये सीन, तो इस वजह से उसको जो है मेरी हमारे पास रहना पड़ता है, हमारी सिस्टर को उनके जॉब के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड भी यहाँ नहीं होते हैं. तो वो जो सारा सिस्टम है ना, तो वो हम ही लोगों में पली बड़ी है. हमारे साथ ही रहती
2: है ना, तभी ज्यादा आप लोगों के करीब है ना।
0: हाँ, अरे हमारे कहाँ, वो तो अपने अम्मी अब्बू के करीब है। आज सुबह मैं हंस रही थी, मैंने कहा मैं अपने वाले साहब को कह रही थी अब्बू आप यकीन करें हम अपने वाले साहब को अब्बू कहते हैं या पापा कहते हैं, वो अब्बू भी कहती है पापा भी कहती है। मैंने कहा ओ माय गॉड ये सिस्टम उल्टा, वो अपनी अम्मी को मामा कहती
2: नहीं। जैसे बड़ी हो जाएगी फिर उसको खैर पता चल जाएगा, अभी तो वो छोटी है ना,
0: एंजॉय कर रही है वो,
2: उसको करने दो।
0: हाँ नाना नानी का प्यार जी खराब स्पॉइल हो रही है, अब हम क्या कर सकते हैं,
2: कौन कर सकता है नाना नानी जैसा, मुझे ये बताइए।
0: है ना मिसेस सईद, दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते नाना नानी दादा दादी है, इससे खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं मिलेगा।
2: मेरी बेटी की सास कराची चली गई शादी पे, तो मैं तो दो रखी हुई है उसके पास, एक दिन तो बच्चा छोड़ के चली गई क्लिनिक।
0: अच्छा,
2: जो बच्चा गिरा उसके होंठ पे चोट वापस आई तो उसको खून शून निकला हुआ था, उसने कहा था मैं आया, उसने फटाफट अपना मियाँ को भेजा की जाके मामा को लेके आओ, फिर आया आके मुझे लेकर गया, लेकिन बस अब मुझे तसल्ली है।
0: सी ये है भरम के रिश्ते, अल्लाह ये मोहब्बतों के रिश्ते ना हम इसे सही बना के रखे, बड़े प्यारे रिश्ते।
2: पता है क्या करती है, माशाल्लाह से चौथा ये बेबी था ना, दो बेटियां दो बेटे
0: माशाल्लाह,
2: जब उसको तंग करते हैं ना पागल से होने वाले बच्चे, तो कहती है अल्लाह मुझे इतना तंग किया, मैंने कहा मेरी बात सुनो नूर, तुमने पाले कितने कुछ है, तुम्हारे बच्चे तो मैंने और तुम्हारे साहब के पाले
0: है, अभी तो पाले नहीं है,
2: तो
0: ये हाल हो
2: गया पास होते, तुम पागल होने लग जाती
0: है। ये आजकल की माए ऐसी है मिसेस सईद, सही बता रही हूँ मैं, कोई पता नहीं है क्या खाना है बच्चे ने, क्या पीना है बच्चे की किस उम्र
2: में ना, उसके बेचारे का क्लिनिक भी होता है, फिर वो आके बच्चों को शाम को पढ़ाती भी है, फिर ये छोटू है ये तो फिर टिकता ही नहीं ना, फिर जब सास के पास छोड़ती है किसको जरा रखे
0: अपने पास,
2: फिर आजकल कहती मैं ले जाती हूँ ऊपर,
0: ये आप जैसे
2: कहती वो उधम मचाता है, लेकिन मैं क्या करूँ नीचे भी नहीं छोड़ सकती, कभी कभी गिरता है कभी क्या होता है, मैंने कहा मेरे सामने तो रहेगा ना।
0: स्वीट, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों का साया, बच्चों के सरों पर सलामत।
2: आज अच्छा मुझे 8:30 मुझे याद आया, मैं सबक पढ़ रही थी, फिर पढ़ के तो याद आया कि आज तो फाइल का प्रोग्राम था, फिर मैंने आधा ही सुना है उसका।
0: अरे कोई बात नहीं, सुन के क्या ही करेंगे, कौन सा उसने कोई ऐसा कमाल का प्रोग्राम कर लिया,
2: मेरा बच्चा है वो भी।
0: मैं भी बड़ा प्यार है, मैं भी ऑनर ये कह रही थी, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, मैंने कहा मैं और साहिल एक दूसरे के साथ यही है तंग करना शरारत करना, क्योंकि क्योंकि जो उनकी उम्र हो गई है ना अब उससे ज्यादा मैं एहतराम ही कर सकती हूँ उस उम्र में दूसरों का।
2: अच्छा मैं तुम्हारी बात से वो एग्री करती हूँ कि ये जो हम कपड़े बनाते हैं ना फैंसी शादियों पे, ये वाकई फजूल होते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, हम एक किसी शादी में बनाते हैं हम 3-4 शादियां भुगता सकते हैं।
0: हाय मिसेस सईद, मैं तो पता नहीं 5,000 शादियां भुगता दी, मुझे तो लगता है लोगों ने मेरी वीडियो वायरल कर देनी है,
2: इतने महंगे बने कि मुझे अभी तक गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने इतने पैसे कपड़ों पे क्यों लगाए हैं, फिर अब मैंने 2 शादियां भुगता ली हैं, इंशाल्लाह आगे भी 2-3 होंगे मैं भुगता लूंगी।
0: वेरी गुड मिसेस सईद, यही करना है,
2: कहते हैं ना कि वो हमने पहन लिए सारों ने देख लिए, ये बात तो मुझे इतनी बुरी लगती है, मैं कहती हूँ निकालता तो नहीं है ना पायर,
0: मेरा यकीन करे
2: अगर देख लिया किसी ने तो क्या हो गया।
0: मैं बताती हूँ, मेरे पास ना ज्यादातर मैं शादियों पे मैं ज्यादा तस्वीरें सिर्फ अपने काम से रिलेटेड ही तस्वीर बनाती हूँ, वरना मैं तस्वीरें नहीं बनवाती ना, अगर मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर्स है ना जो कोलाज है, तो मैं लिखूंगी ईयर और डेट के किस किस शादी पे सेम ड्रेस ना मैंने पहना हुआ है, और वो मैं शेयर करूंगी, आप लोग हैरान हो जाएंगे, ये मैं लिटरली करती हूँ, और मैं सबको ये कहूंगी अगर आप लोग कर सकते हैं, मैं कपड़ों के बड़े शौकीन हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल कपड़े कैजुअल लेती हूँ जो आप सारा सारा टाइम पहन सकते हैं,
2: के मुताबिक लेती तो बहुत ज्यादा हूँ सर्दियों के भी गर्मियों के भी, लेकिन जो फैंसी है ना वो एक हद में लेती हूँ।
0: अरे वो तो पहने ही नहीं जाते देख के, सर्दी में भी नहीं पहने जाते,
2: कोई नहीं, बड़े बड़े चीज खराब हो जाती है बर्बाद हो जाती है,
0: और इतने महंगे,
2: थोड़ी चीज ले और सुथरी ले,
0: मिसेस सईद आप लेने चले जाए ना रेशमी कपड़े, आप देखे ना 15,000-20,000, ये मैं कम से कम प्राइस बता रही हूँ, अच्छे
2: बच्चे में यही तो कह रही हूँ की महंगे बने हैं ना, तो 14,500 का अगर हम सूट ले रहे हैं उसके ऊपर आप मुझे बताए उसकी हमने सिलाई भी देनी है, हमने उसके ऊपर
0: मोती धागे भी लगाने हैं,
2: सिलाई भी करना पड़ जाए, ऊपर जा रहा है,
0: मैं इसे मुझे तो बड़ी स्ट्रेस, मैं कह रही हूँ मेरे पास 2 फ्रॉक्स हैं, ए लाइन्स हैं जो भी हम थोड़े फैंसी कपड़े पहनते हैं, काफ्तान्स हैं 3 मेरे पास, ऐसे मुझे तो नपे तुले हुए याद है भाई, वो एक बैग बना हुआ है, हम दोनों बहनें अल्टरनेट डेज पे पहनने, मेरी बहन भी ऐसी है मैं भी ऐसी हूँ, तो बस हम दोनों बहनों का काम चल रहा है,
2: एक ही माप है आप दोनों का, एक जैसे के हैं आप तो पहन सकती हैं, तो दूसरा मेरा भी बड़ा शौक था डिजाइनर बनने का, मेरे भी हालात ऐसे थे कि मुझे भी किसी ने नहीं बनाया, जो बहुत खर्चा होता है
0: मिसेस सईद, ये दुख जो है ना, फिर आप मेरा दुख समझ सकती हैं,
2: फिर मैंने कोर्स किए बहुत ज्यादा किए हैं, मैं आप डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, पेंटिंग स्टिचिंग हैंड एम्ब्रॉयडरी मशीन एम्ब्रॉयडरी,
0: मिसेस सईद
2: जॉब मुझसे करवाए तो मुझे ना आता हो,
0: माशाल्लाह आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
2: मेरा तो सिलाई सेंटर था, मेरा तो टॉप पे आया था सिलाई सेंटर मेरा तो।
0: वाह, आप अच्छा आप सिखाते भी रहे हैं।
2: उसका प्रोग्राम उस वक्त इस्लामाबाद से प्रोग्राम आते थे, पिशावर से पोटा वगैरह, मेरा पिशावर चैनल पे मेरा बाकायदा मेरे सेंटर का प्रोग्राम आया था।
0: मिसेस सईद सो प्राउड ऑफ यू, मुझे इतनी खुशी हुई है आपको सुनकर ये बात।
2: मैं कभी जिक्र ही नहीं किया, कभी कोई मौजू आए ही नहीं इस तरह के मैं किसी से बात पूरा करती।
0: अरे मिसेस सईद मेरा पता है मुझे
2: यकीन करें, मेरे गांव में जिस गांव में मेरा सेंटर पहले था फिर बाद में मैंने अपने गांव अपने घर में करवा लिया था। आप यकीन करें कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें मेरी ट्रेंड कोई लड़की ना हो।
0: बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है सुनकर। और प्लीज बाकी भी जो खवातीन सुन रही है, जिंदगी में जो जिस मुझे अल्लाह ने बहुत पैसे दिए ना, मैं बहुत ही की खोलूंगी मिसेस सईद, फिर मैं और आप पार्टनर हो जाएंगे।
2: मैं अभी आपके ये टॉपिक था कि मैं क्या करूंगी, तो मैं इंशाल्लाह मैं हेल्प करूंगी। मैं ऐसी बच्चियों की मदद करूंगी जो नहीं कर सकती, और मैं कर भी रही हूँ
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
2: लेकिन मैं फिर बहुत ज्यादा करूंगी और ज्यादा
0: इंशाल्लाह। मिसेस सईद लॉट्स ऑफ लव, बहुत प्यार आपके लिए।
2: जीती रहे, सबको बहुत बहुत
0: वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मिसेस सईद हमारे साथ थी रावलपिंडी से, और इतनी प्यारी बातें करती है, इतनी मोटिवेशनल बातें करती है कि सुनकर खुशी होती है। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये जो लोग कहते हैं ना कॉल कट जाती है, पता नहीं बीप की आवाज आती है, ये मैंने कॉल उठाई भी थी कोई आवाज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।
3: ओ बेटा, तीन माह के बाद मेरी कॉल मिली है, मेरी परदेसी बेटी रबेका बेटी, वेलकम बिस्मिल्लाह बड़ी की।
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, गायब हो जाते हैं आप लोग। हेलो, कॉल मिल गई आपकी। हेलो, लिसनर्स प्लीज आपसे इल्तिमास है, जब आप कॉल करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान भी रखा करेंगे जब आपकी कॉल मिल जाती है, ताकि फिर आप हमसे बात कर सके। अच्छी बात है कि अगर आप अपने काम के दौरान जो है वो बाकी चीजें कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं एक गाना लगा लूँ फिर जो मर्जी कर लेना। तुम आइए तो मुझे याद है वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, वैसे सजाद अली के तो सारे गाने मुझे बहुत पसंद है, बट वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक इज धुआं। एंजॉय दिस ट्रैक, आई विल बी राइट बैक।

0: 101 Time Check. It's 10:30 a.m.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है.
4: पेपा है
2: तो ऐड टू कार्ड है.
4: पेपा है.
5: इन स्टोर, ऑनलाइन एंड एटीएम हर जगह चले. फायदे पे फायदा दे.
6: दिस इज एफएम 101. दिस इज एफएम 101.
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है.
4: पेपा

0: फायदा दे। बेपाक आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: I'm not going to be able to do it.

0: Fayda pe fayda de.
1: This is FM 101. This is FM 101.
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है.
4: पेपा है
5: तो ऐड टू कार्ड है.
4: पेपा है.
0: इन स्टोर, ऑनलाइन, एटीएम, हर जगह चले. फायदे पे फायदा दे.
6: पेपा आज ही अपने बैंक से बनवाए.
1: This is FM 101.
7: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: 101 time check. It's 11:30 a.m.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है.
4: पेपा है
2: तो ऐड टू कार्ड है.
4: पेपा है
5: इंस्टॉल ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे.
6: दिस इज एफएम 101. दिस इज एफएम 101.
2: पेपा कार्ड है?

0: फायदा दे। पेपक आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: दिस इज FM 101.1
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

This is FM 101.

6 जिन लोगों की है आज सालगिरह उन्हें कहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहें, आने वाला ये साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी कामयाबियां लेकर आए। और इसके अलावा जो लोग हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, ड्राइव वेरी केयरफुली एंड हैव अ सेफ जर्नी, एहतियात इलाज से बेहतर है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ सफ़र करने वाले बाकी मुसाफिरों का भी ख्याल रखिए, ड्राइव बहुत एहतियात से कीजिए और इस सफ़र में हमारे साथ चलते रहिए जिसमें हम और आप रहेंगे आपसे लेकर 1 बजे तक एक साथ। हमेशा की तरह आज भी लेकर आए हैं प्रोग्राम में ढेर सारी मालूमात, एक अदर टॉपिक भी होगा जिस पर करेंगे हम बातचीत, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0511100101 पर, साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, FM 101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियल पेज है और वहाँ एक अदद पोस्ट आपको नजर आएगी, सो आप वहाँ जाकर कमेंट कर सकते हैं, अपना हाल अहवाल हमसे शेयर कर सकते हैं, अपने होने का एहसास हमें दिला सकते हैं, क्या हो रहा है जिंदगानी में ये भी हमें बता सकते हैं, जो आपका दिल चाहे कहने का वो आप हमसे कह सकते हैं, लेकिन वही बात कि अच्छी अच्छी बातें करनी हैं, ऐसी बातें करनी हैं जिन्हें पढ़कर हमें भी अच्छा लगे और सुनकर आपको भी। अभी के लिए चलते हैं प्रोग्राम के फर्स्ट ट्रैक की जाने, लौट कर आएंगे वापस तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए 101 FM।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: Big Radio, Big Style. FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: Big radio, big style. FM 101.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के खिलाफ हौसी मलेशिया के बार बार किए जाने वाले दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गई कार्रवाई के दौरान 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। पंजाब की वज़ीर-ए-आला ने सूबे के हर जिले में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज कायम करने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101।
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का अखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का अखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101।

0: FM 101.1.
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101.1।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: relax in the dark.
1: Zeus.
0: Yeah.

0: Nuestro.
1: सुनते रहिए FM 101 101.

0: सुनते रहिए FM 101।
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101।

0: This is FM 101.
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
3: गेट रेडी फॉर नॉन स्टॉप हिट्स, इट्स बैक टू बैक इंग्लिश बैंगर्स एवरी डे फ्रॉम 3 PM टू 4 PM ओनली ऑन FM 101। फ्रॉम द लेटेस्ट चार्ट टॉपर्स टू द क्लासिक्स यू लव, वी हैव गॉट योर प्लेलिस्ट कवर्ड। स्टे लॉग्ड इन बिकॉज़ द बेस्ट इंग्लिश हिट्स आर कमिंग योर वे right here on FM 101.

अरमान खान के साथ आप रहते हैं। अब से लेके 12 बजे तक आपका हमारा साथ होता है। अपने दिल की बातें लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वो बातें जो हमारे दिल में होती हैं, वो बातें जो हमारे दिल में धक धक धक छन छन छन चलती रहती हैं, वो बातें जो हम आपसे कहना चाहते हैं और वो बातें जो आप हमसे करना चाहते हैं। सो जनाब, दिल वालों की बज़्म सच चुकी है और दिल वालों की बज़्म में आप हमारे साथ होते हैं और तमाम दिल वाले मुल्क भर में, पाकिस्तान भर में, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, कराची, मिट्टी, नवाबशाह, पाकिस्तान भर में और इंटरनेट के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जहां जहां इस आवाज़ को सुना जा रहा है, 101 इंटरनेशनल की इस ट्रांसमिशन को सुना जा रहा है, सभी सुनने वालों को एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से, मन की सच्चाइयों से खुश आमदीद कहते हैं और मुझे कहते हैं फरहान खान। और दिल वालों के इस बज़्म में आपका हमारा साथ होता है। और जनाब, ये जो दिल वालों की बज़्म है, ये महज एक महफिल नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी दुनिया जहां जज्बात की कदर होती है, जहां मोहब्बत अपनी पूरी शिद्दत के साथ सांस लेती है और जहां अल्फाज दिलों की ज़ुबान बोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ एहसास ज़ख्मों पर मरहम बनते हैं, जहाँ हिजर की तड़प को समझा जाता है और वसल की खुशबू महकती है। सो जनाब, ये बज़्म उन लोगों के लिए है जो दिल की सच्चाई पर यकीन रखते हैं, जो धड़कनों की ज़ुबान समझते हैं, जो वफा को सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि इबादत समझते हैं। यहाँ ना झूठ की गुंजाइश होती है, ना यहाँ धोखे का गुजर होता है, बल्कि आंखों से सच बोलने का हुनर होता है। वेलकम टू द दिल वालों की बज़्म, सिटी ऑफ लव, लाहौर शहर से आपका मेरा साथ होगा। आपसे लेके ठीक 12 बजे तक आप हमारे साथ रहेंगे। और 04-2111-0101 इज़ अ डायलिंग नंबर, 04-2111-0101 हमारे रابطے का नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इस बज़्म का हिस्सा बन सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान एफ़ एम 101 लाहौर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप हमारा साथ निभा सकते हैं। एफ़ एम 101 के ऑफिशियल पेज पे आप हमारे साथ हो सकते हैं। अपने दिल की बात कुछ कहना चाहते हैं, कोई अच्छी सी बात कहना चाहते हैं, तो आज दिल खोल के अपने दिल की बात कह डालें। पता नहीं क्यों हम दिल की बात करने में इतनी देर क्यों कर देते हैं और फिर कहते हैं काश काश के मैंने अपने दिल की बात कह दी होती, काश के मैंने वो बात कह दी होती, काश ऐसा ना होता। इस काश को ज़िंदगी में आने से पहले कह दें जो कहना चाहते हैं, जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है। ओपन कम्युनिकेशन किया करें, मैं हमेशा कहता हूँ ओपन कम्युनिकेशन, बातों को मुबहम ना रखा करें। जिससे कोई गला हो, किसी से शिकायत हो, किसी से कोई नाराज़ी हो, या कोई ऐसा आपका मोहब्बत वाला हो, चाहत वाला हो, जिससे आपकी ज़िंदगी का बड़ा करीबी ताल्लुक़ हो, उस ताल्लुक़ को ख़त्म ना करें। हम इंसान हैं ना, हमारी ज़िंदगी में रहते हुए बहुत सी गलत फहमियाँ हो जाती हैं और बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में रहते हुए गलत फहमियाँ पैदा कर देते हैं। गलत फहमी तभी होती है जब हम खुद कमज़ोर होते हैं। बहुत ज़्यादा गुमान भी अच्छे नहीं होते और बदगुमानी तो वैसे ही अच्छी नहीं होती। अच्छा गुमान रखें, हमेशा हमेशा अच्छा गुमान रखें और हमेशा अच्छा गुमान रब की ज़ात से रखें। और मेरा रब कहता ना कि तुम मुझे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसे ही मिलूँगा, तो खुद सोच लें।

वेल जनाब, आज का जो शो है दिस इज़ वेरी एक्सक्लूसिव एंड वेरी डिफरेंट इस हवाले से कि आज का जो हमारा मौजू है, मैंने सोचा कि शो के आगाज़ में आपको ज़रूर बताऊँ। आपके नज़दीक, सर आपके नज़दीक भी अगर आप सुन रहे हैं, आपके नज़दीक कामयाबी ज़िंदगी में क्या है? व्हाट इज़ द सक्सेस ऑफ लाइफ?

कामयाबी क्या है, आप ज़िंदगी को कामयाबी क्या समझते हैं और ज़िंदगी की कामयाबी है क्या। फ़र्ज़ करें कि आप एक लंबे सफ़र पे निकले हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी है, पेट्रोल है और सफ़र का पूरा सामान है, लेकिन एक चीज़ मालूम नहीं आपने जाना कहाँ है। क्या सिर्फ अच्छी गाड़ी या फिर तेज़ रफ्तार आप किसी मंजिल की जानिब जा रहे हैं, लेकिन आपको मंजिल का नहीं पता। अच्छा, ज़िंदगी में कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है, डिग्री होती है, सलाहियत होती है, मेहनत करने का जज्बा होता है, लेकिन अगर हमें ये मालूम ना हो कि हम कौन हैं, हमारी असल ताकत क्या है और हमें किस सिंथ जाना है, तो इसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं। ख़ुद शनासी का जो सफ़र है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसी वजह से जो ख़ुद शनासी है ना, ये भी बहुत अहम होती है। हम में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि दुनिया जो है ना हमसे क्या चाहती है, हमारे वालदैन क्या चाहते हैं, हम एक ख़ास शोबा इख्तियार करें और इसके साथ साथ हम ज़िंदगी में बहुत कामयाब हों, और कुछ हमने पैरामीटर्स ज़िंदगी में रखे होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने भी रखे होते हैं, हमारे दोस्तों ने भी रखे होते हैं, फिर हम दोस्तों को देखकर हम वैसी ही ज़िंदगी की ख्वाहिश करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को आइडियलाइज ज़िंदगी में कर लेते हैं, यार ये हमारे आइडियल हैं, ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, लेकिन सारे शोर में एक आवाज़ अक्सर दब जाती है कि मैं खुद क्या चाहता हूँ, एक्चुअली व्हाट आई वांट। बस एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि आपने कभी खुद से पूछा है कि आप किस काम में फितरी तौर पे बहुत अच्छे हैं। अपने से आज सवाल कीजिएगा, कौन सा काम करते हुए आपको जो है ना वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। मैं ये कह सकता हूँ बीइंग अ ब्रॉडकास्टर, मुझे नहीं पता चलता कि मेरा ये वक्त कैसे गुजर जाता है। आपके लिए कौन सा काम करते हुए आपको जो है ना वक्त गुजरने का एहसास ना हो, आप लोगों के साथ काम करके बेहतर नतीजे देते हों, या फिर आपको तन्हाई में मज़ा आता हो, या फिर आपको लोगों में मिलने में मज़ा आता है, या फिर आपको अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपका स्किल है, जो आपका शौक है, जो आपका पैशन है, उसमें आपको मज़ा आता है। खुद शनासी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जानना, अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना, अपने मन में डूबना। ओ क्या इकबाल ने कहा है ना, अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी। यानी ज़िंदगी के बहुत से जो जवाब हैं ना, हम बाहर तलाश करते हैं, लेकिन पहले अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। एक अहम सवाल ये भी है कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है, वट इज़ सक्सेस। 111 इज़ अ डायलिंग नंबर जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हाय हाय मैं दीवानी कुछ ना जाना। वेल जनाब, बढ़ेंगे आज के पहले ट्रैक की जानिब, उसके बाद हम दोबारा लौट के आएंगे द सिटी ऑफ लव लाहौर से। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान, शब के 12 बजे तक आपका हमारा साथ होगा। राहत फ़तेह अली खान की खूबसूरत सी आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आहा, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, तमाम सुनने वालों के नाम, तमाम चाहने वालों के नाम। भाई बिगाओ

0: हाय मन अटके अभी परवा देना जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन मन आपका जो ना किसी बेपरवाह से ना अटके और ऐसे किसी से ना अटक जाए अबे परवाह ना बे बे बेपनाह मोहब्बत करें बेपनाह प्यार करें उसके लिए तड़पें उसके लिए आप सब कुछ अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएं लेकिन वो बेपरवाह मन अटके या बेपरवाह देना। एक कॉलर है हमारे साथ, लेट्स सी हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैं कौन बोल रही हूँ?
1: मैं बादाम बोल रही हूँ।
0: कौन से बादाम? काठे बादाम है, देसी बादाम है कि इंग्लिश?
1: महंगे बादाम।
0: महंगे बादाम। ओहो वाह जी वाह, महंगे वाले बादाम।
1: मैं क्या बड़े बादाम महंगे हैं, मैं अपना नाई बादाम रख लेंगी।
0: ये गल ठीक है, एलोरी बादाम ने
1: आहो सोना ना है ना।
0: लोरी बादाम।
1: मैं कि चलो लोका दे मेरा नाम सुन के बादाम जो है ना तेज दिमाग भी तेज हो।
0: नहीं वैसे ना तुसी हेलो करोगे ना तो पूरे लाहौर नु बल्कि पाकिस्तान नु पता लग जाएगा कौन बोल रहे हैं।
1: ओफो चलो कोई गल नहीं, मैं दस देनी है। मेरा रियल नाम है लाहौर तो रिमशा।
0: लाहौर तो रिमशा। पंजाबी भी अच्छी बोल लें तुसी है।
1: चलो शुक्र है तुसी मेरी तारीफ की।
0: नहीं नहीं तुसी कहो मेरे को अद्धा घंटा थोड़ी तारीफ कर देना। नहीं
1: कर दे
0: वो तो सही कर देना, सही पता ना थोड़ा उन्होंने तुम्हारी असलियत का पता
1: कर देने
0: और ना तुम्हारी असलियत का पता ना ऐसे मारे नहीं करते। छोटे ना कर दे, छोटे दी उंजी तारीफ नहीं होंदी, वो छोटे नाल बस। चलो कोई नहीं उंजे होना सी हो गया।
1: माते जो होंदे ने ना और दिलो तारीफ कर दे ना, उन्होंने पता होंदा ना औलाद दा की है। अक्सर मतलब जब बाहर रहते तो मतलब उनके सामने तो मीठा छूटा बोल लेते होते हैं कि हां ऐसे ऐसे हैं।
0: अच्छा क्या
1: लेकिन जो माँ बाप की जो मतलब जो माँ बाप इज्जत करते हैं उसका अलग से एक मजा होता है।
0: इज्जत अफजाई जो करते हैं
1: वो जो कहते हैं ना कि बार बार घर के काम जो कर दे हो ना तो ज्यादा तो कोई ना कोई तो सुनना ना वो तो काम करने का मजा कौन नहीं आता।
0: माँ बाप जो इज्जत अफजाई करते हैं ना उसका अपना ही मजा है ना।
1: उसका एक अपना ही मजा होता है। जब वो कहते हैं जिस दिन माँ बाप बोलना ना वो काम भी चंगे नहीं होते, जो तो तीन चार सुनना सुना ना दे तो सुनना लवे असी।
0: आपका नाम मासूम ना रखते हैं?
1: मैं मासूम रख लेती हूँ, इतना प्यारा नाम है मासूम।
0: बादाम से मासूम रख लेते हैं आपका नाम।
1: बादाम तो महंगे है ना, वो तो चलो माना। जो कहते हैं ना कि मैं कोई पूछेगा ना तो जिसको नहीं समझ आएगी तो मैं बादाम बता दूंगी,
0: जिसको समझ आएगी उसको मासूम बताएंगी है?
1: मासूम बताऊंगी।
0: चले
1: जबरदस्त। आजकल के दौर में मासूम है ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
0: आप अपने मोबाइल से कॉल करेंगे घर वालों के?
1: ये मोबाइल जो है मतलब के पहले बाबा का था, अब ये मैं यूज करती हूँ।
0: बाबा का बैलेंस उड़ाओ तुसी।
1: नहीं मैं कराया है।
0: अच्छा तुसी कराया?
1: पंजाबी
0: बोल के फस रहे हो तुसी। आप उर्दू में बता सकती हैं? हाँ
1: तो मैं बताती हूँ। कामयाबी कामयाबी भाई मुझे जहाँ तक लगता है ना कि एक माँ बाप का मतलब बात मानना, एहतराम करना, और जो इंसान ने मैंने जहाँ तक देखा ना जिस इंसान ने मतलब सब्र करना, बर्दाश्त करना, हर छोटी छोटी बात को इग्नोर करना, हर मतलब उस बात को तहम्मुल से सुनना, जवाब देना, वो बंदा कामयाब हो जाता है।
0: ठीक है बिल्कुल ठीक।
1: क्योंकि अगर हम बर्दाश्त करना सीख जाते ना, हम ये नहीं होता कि हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी, ये वो फलाना कर दिया। अगर ये सब कुछ इंसान बर्दाश्त करना सीख गया ना तो वो आगे इंसान कामयाब हो जाता है।
0: बिल्कुल ठीक है, बर्दाश्त होनी चाहिए, पॉइंट आ गया आपका।
1: बिल्कुल पढ़ाई से तो इंसान चलो माना एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाता है, आगे बढ़ने की उसको उम्मीद मिल जाती है, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजें भी सीख जाए ना तो बंदा कामयाब हो जाता है।
0: जबरदस्त, बहुत शुक्रिया
1: रिमशा जी, आपका पॉइंट
0: आ गया। और सभी
1: सुनने वालों को मेरा सलाम, मासूम का, मासूम बच्ची का सलाम। मैंने टाइम दे दिया आपका ज्यादा। ओके जी, बाकी मासूमों को टाइम देते हैं,
0: मासूमों को टाइम। ओके रिमशा, अल्लाह हाफिज। जनाब दैट वाज रिमशा विद अस, और नहीं सॉरी, मासूमा हमारे साथ थी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का और हमें कॉल करने का। ओके जनाब, 04 2111 0101 इज़ द डायलिंग नंबर जिस पे आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और आप लोगों की कॉल्स को हम शामिल कर रहे हैं। दो अदद शीशे के उस पार खूबसूरत से चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आपका भी शुक्रिया जी। वो जिसने दो ही पहना नहीं मिलके गल्ला कर दी हैं आपस से, तो उस समय तुम गल्ला कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी?
2: आपको मेरी आवाज़ आ रही है
0: जी? अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए सर क्या कहेंगे, कौन सा
2: आप? जी,
0: अच्छा राव भाई, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ना कट रही है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड तक आप कह रहे हैं कि जी हम आपका इंतज़ार करें, है ना? नहीं, अभी भी नहीं आई सर, एक मिनट भी हो गया।
2: हेलो
0: जी सर,
2: जी अब आइए आपको
0: जी, जी जी जी जी फरमाइए फरमाइए
2: जी। भाईजान अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ, लाहौर चुबरी शामनगर रोड से।
0: जी जी रऊफ साहब, क्या कहेंगे आप?
2: जी भैया, आपके प्रोग्राम में पहली दफा मैंने कॉल की है।
0: सर बहुत शुक्रिया आपका,
2: आपका प्रोग्राम सुन रहा था काफी देर से
0: सर,
2: और माशाल्लाह टॉपिक भी आपका अच्छा है। तो भैया आप से अगर मैं यही सवाल करूं, आप क्या कहते हैं इसके बारे में?
0: मैं तो थ्रू आउट कह ही जा रहा हूं, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। मैंने आपने शो अगर सुना तो
2: आपका जो कहना, आप जो कहना है अल्लाह ताला आप सब हमें उस पर अमल करने
0: आमीन,
2: की भी तौफीक।
0: आमीन,
2: आमीन। क्या आपका बोलना, आपका सुनना,
0: आमीन। आप मुझे भी अमल की तौफीक दे अल्लाह, जो मैं कहूँ उस पे।
2: दरअसल दर हकीकत हमारे पास इल्म तो हर बंदे के पास आ रहा है, लेकिन अमल की तौफीक नहीं आ रही।
0: बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है।
2: मस्जिद इमाम से लेके घर के एक छोटे से बच्चे को भी हर बात का इल्म है, लेकिन अमल की नहीं बात है वहाँ।
0: सही कह रहे हैं आप,
2: जिसकी वजह से बड़ा माहौल घर में, हर जगह पे जो बच्चे अमल नहीं करते वो खराब हुए भी होते। मेरे लिए यही बात है,
0: बिल्कुल ठीक। यानी अमल जरूरी है ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
2: आप मेहरबानी है, कोई भी गाना मेरे वाले साहब, मेरी वालदा, इनके लिए कोई भी गाना आप डेडिकेट कर दें, मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ।
0: आपके वालिद और वालदा सुन रहे हैं इस वक्त, साथ हैं आपके?
2: जी मेरे वालिद साहब मेरे पास हैं।
0: अच्छा।
2: और मेरे वालिद साहब एक शेर भी सुनाना चाहेंगे आपको।
0: अच्छा,
2: तो ये जरा बात कीजिए।
0: जी जी,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम।
2: आपने कभी पहले सुना नहीं होगा।
0: जी जी जरूर सुनाइए।
2: आपने सच सोचना कि सच यही है, सच है
0: सर।
2: सच्चे आशिक परवाने होते हैं,
0: सच्चे आशिक
2: परवाने होते हैं,
0: परवाने होते हैं।
2: शमा के हजार दीवाने होते हैं,
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: फूल पुराने होते हैं, दूर के ढोल सुहाने होते हैं।
0: वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा।
2: अपनों से अच्छे बेगाने होते हैं, कागज के फूल पुराने होते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब।
2: अब एक गाना उसमें ना एक अल्फाज है वो सुनने आते हैं आसिफ फरमाइश है
0: जी जी
2: फिल्म तहजीब फिल्म तहजीब रंगीले की आवाज लगा है मिश्र का बाजार देखो इस अल्फाज में वो गाना तकदीर किसी को भी बुरे दिन ना दिखाए होते हैं बुरे वक्त एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था ये वो है
0: एक हुस्न की
2: तकदीर किसी को भी बुरे दिन ना दिखाए होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए
0: ठीक सर ठीक सर बहुत शुक्रिया सर
2: सलामत
0: रहिए जी वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया जी लाश परवाने के सामने से हटा दे कोई लाश परवाने के सामने से हटा दे कोई शमा मासूम है बदनाम हो जाती है। अच्छा जनाब एक ट्रैक की मुझे रिक्वेस्ट की थी सो मैं चाह रहा हूँ कि अंकल ने इतना प्यारा हमें शेर सुनाया अपना कलाम सुनाया तो मेहदी असर खान साहब की आवाज़ को शामिल करूँगा एंड दिस ट्रैक इज़ फॉर यू स्पेशली आपने खान साहब की इस ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था हाय

0: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
1: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
0: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का अखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का अखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
3: This is 101% pure.
4: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का अखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
4: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: अच्छा जनाब, एक और कॉलर है, लेट्स सी हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी सर, कौन साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन साहब?
1: मैं मोहम्मद अदरीस बात कर रहा हूं।
0: जी अदरीस साहब, कामयाबी के बारे में दसो की कहोगे?
1: दुनिया और करता रहा कि
0: बोल गयो
1: दुनिया पे रख दे ऐसा बह रख लो बोल आवे ते संसार टूट जावे तेरे
0: रोन।
1: असल कामयाबी हो ये कि तुसी दुनिया ते रहो ते या दुनिया ते चले गए। ते कोई तो अच्छे लफ्जा जी याद कर।
0: बिल्कुल ठीक।
1: ते ये ऐसा काम करके जाओ कि हर बंदा तानो दिलो याद करे किसी की गला दे पीछे या किसी दे बगर भजन दे तो अमल ही कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली हो कामयाबी दी रात।
0: अच्छा, अमल की होना चाहिए?
1: अमल कोई अच्छा अमल, कोई नेक अमल, कोई
0: अच्छा कोई एक अमल होना चाहिए कि हर अमल अच्छा होना चाहिए।
1: कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हर अमल अच्छा होना चाहिए। और हर अमल तुसी एक बराबर से ना कर सकते।
0: ठीक है।
1: तो कोई एक ऐसा अमल होएगा जरा थोड़ा हर अमल तो बहुत रहेगा। किसी का एक मिसाल है कि तुसी किसी बंदे का एहसास कर दे हो, किसी गरीब का भला कर दे हो, ते वो तुसी बाकी कमा दे आप बराबर से ही कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक।
1: थोड़ा जेन एक माइंड उस पास बनया है।
0: बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब, जिंदे रहो। ग्यारह बज के 11 मिनट हो जाते हैं। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाहौर स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। 12 बजे तक आपका हमारा साथ होता है और वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है जो आपके साथ गुजरता है। वो कहते हैं ना, अच्छे वक्त की ये निशानी होती है कि वो बड़ी तेज़ी से गुज़र जाता है। और ये कभी भी वैसे भी अंदाज़ा मैं करता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है ना। आप हम लोग खुद ही बाज़फ़ा हैरान होते हैं। लेकिन ये कि थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब आपका तशरीफ़ आवरी के इस अंदाज़ में। अच्छा जनाब, वक्त जो है ना, ये यकीन जाने ज़िंदगी की बहुत दौलत है जिसे ना ख़रीदा जा सकता है ना ही इसका ज़खीरा किया जा सकता है, और ना कभी इसको वापस ला सकते हैं आप। बस ये गुजर ही जा रहा है, गुजर ही जा रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ना, हम पैसे को खो के ना, अगर पैसा चला गया हमारी ज़िंदगी से, हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। हमारे जो ताल्लुकात हैं ना टूटने के बाद, वो ताल्लुकात हम दोबारा बना सकते हैं। इवन हम जब को फेलियर्स होते हैं उसके बाद हम कोशिश कर सकते हैं, मगर ये जो वक्त है ना, ये वापस नहीं ला सकते। जो वक्त गुज़र जाता है, जो वक्त गुज़र गया है या जो वक्त गुज़र रहा है, और ये पता नहीं, आई डोंट नो, बट ये ज़िंदगी की अजीब हकीकत है कि हम अक्सर किसी चीज़ की जो ना असल जो उसकी कदर ना उस वक्त मालूम होती है जब वो हमारे पास नहीं होती। और जो जब वक्त हमारे पास होता है ना, उस वक्त में हम चीज़ों की वो कदर नहीं करते, उस वक्त में उन चीज़ों को वो वैल्यू नहीं देते, उस वक्त में हम उन रिश्तों को वो वैल्यू नहीं देते, उन ताल्लुकात। और जो जब वक्त हमारे पास होता है ना, उस वक्त में हम चीज़ों की वो कदर नहीं करते, उस वक्त में उन चीज़ों को वो वैल्यू नहीं देते,

0: प्रोफेशनल लाइफ, फिर अपनी अपनी लाइफ, फिर अपनी ज़िंदगियों में, वो कहीं ना कहीं हर बंदा अपनी ज़िंदगी में खो जाता है। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें ऐसी बदलती हैं कि आप फिर उस वक्त को याद करते हैं, उन लम्हों को याद करते हैं, उन पलों को याद करते हैं जो गुज़रा हुआ वक्त होता है। और अगर अच्छा वक्त गुज़रा होता है वो तो आपको शिद्दत से याद आता है ना। और फिर एक दिन हमें एहसास ये दिलाता है कि मतलब जिन लम्हों को हमने बिल्कुल मामूली समझते थे ना, दरअसल वही हमारी ज़िंदगी थी, वही हमारा असल वक्त था, लेकिन हमने उसको गुजार दिया उसके बारे में सोचते रहे। एनीवेज एक कॉलर है, लेट्स सी हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर चले गए हैं, ये ज़ैदी साहब आए हैं तो सादी कॉलर्स भी चले गए। अस्सलाम वालेकुम।
1: बराए मेहरबानी इंतज़ार फरमाएं, प्लीज होल्ड।
0: होल्ड पे चले गए जी। क्या बात है जी, बहुत खूब, जबरदस्त, मजा आया। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सर जी, आबद हुसैन शेरशाह कॉलोनी कराची
0: जी। आबिद साहब कैसे मिजाज हैं आपके?
2: सर जी आप ठीक हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ अल्लाह का शुक्र है।
2: आज आपसे मेरी पहली बार बात हो
0: सर, जहन नसीब सर, जहन नसीब, जहन नसीब।
2: तो थोड़ी सी शिकायतें भी हैं आपसे। आप आजकल ज्यादा तो लाहौर में ज्यादा गर्मी है, बड़े झटके से आपकी आवाज आती है हमारे पास।
0: अच्छा, ओहो हो हो हो, चलें।
2: तो जब फैसलाबाद, मेरा तलक है फैसलाबाद से ना?
0: जी जी जी जी।
2: तो फैसलाबाद में आपकी नशरियात नहीं आती, मैं पिछले जिम्मे भी फैसलाबाद में था।
0: चलें, हम इसके बारे में आपकी आवाज पहुंचा देंगे।
2: हाँ, तो ये थोड़ी नशरियात वो बेहतर करें, क्योंकि मैंने अभी 30 तारीख को भी फैसलाबाद में फिर जाना है।
0: सर आपके फैसलाबाद जाने से पहले ही हम कुछ करवा देते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं, हाँ मुझे ये बताएं कि आपकी नज़दीक कामयाबी, सक्सेस, जिंदगी में कामयाबी क्या है? आप कामयाबी को क्या कैसे देखते हैं?
2: भाई बात ये है, कामयाबी क्या है, जब हमारे कैद बोलते थे ना, काम काम काम और काम, जिसने जिसने मेहनत किया वो कामयाब हुआ है।
0: बिल्कुल ठीक है।
2: जिसने मेहनत नहीं की वो नाकाम हुआ है। तो आज जब आपने ये गाना लगाया ना, एक हुसन की देवी से मुझे प्यार हुआ था।
0: क्यों, आपको भी हो गया?
2: तो नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना, ये तो इसमें तो मेरी जान है यार, ऐसी बात नहीं है।
0: हुसन की देवी में जान है आपकी?
2: अच्छा हाँ, हुसन की देवी में जान है।
0: तो प्यार हुआ था आपको?
2: हाँ जी, नहीं प्यार नहीं हुआ था मेरे को,
0: हुसन की देवी आ गई थी जिंदगी में।
2: हाँ नहीं, असल पता बाहर की, इसमें जो लफ्ज थे ना, लफ्ज मोती थे, मोती बोलता मोती।
0: ठीक ठीक।
2: तो मेरा 2017-18 में विरसा चैनल चलता था इस्लामाबाद लाहौर कराची से।
0: ठीक।
2: तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, बाजी कमल नसीर साहब प्रोग्राम करती थी, जो हमारी पहली अनाउंसर है।
0: ठीक है। जी जी जी।
2: तो जब भी मैं उनको बोलता था तो मेरे को पता क्या बोलती, आप तेन की गल है पंजाबी में, मेरे को बोलती आप तेन की गल, तू क्यों सुनता? मैं कहना इसमें बड़ी मोहब्बत वाली बातें हैं और इंसान को सीधा करने वाली बातें हैं, अमल वाली बातें। हाँ जी, जब तकदीर किसी को बुरे दिन दिखाती है ना, तो फिर कोई भी अपने पास नहीं होता, ये भी याद रखना मेरे भाई।
0: अच्छा।
2: हाँ, तो ये मेरी आपसे पहली कॉल है और मेरी पहली मुलाकात, इंशाल्लाह करते रहेंगे मोहब्बत, अगर आपसे मेरी मोहब्बत बरकरार रही तो।
0: नहीं, आपको शक है इस बात पे? आपको शक है कि आपकी मोहब्बत बरकरार नहीं रहती?
2: नहीं, पता क्या बात है, अभी मैंने 5-6 बार फोन किया ना, बड़ी मुश्किल से।
0: अच्छा अच्छा, नहीं वो तो फिर आपको पता ही है, वो कॉल्स का सिलसिला होता है ना।
2: तो थोड़ी सी नशियात बेहतर करे
0: इंशाल्लाह,
2: मजा आ रहा है आपके प्रोग्राम, लाहौर से आ रहे हैं ना
0: सर,
2: उनके साथ तो मेरी बड़ी मोहब्बत होती है लाहौर से, तो बड़े बड़ी बड़ी हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी प्रोग्राम करते हैं। सर सर
0: बहुत शुक्रिया जी, जीते रहे, सलामत रहे, खुश रहे।
2: आपको, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरा सलाम।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, एक अच्छी खबर आपको सुनाता चलूं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन मैच था 2020, जिसे पाकिस्तान ने जीत लिया है। श्रीलंका ने 20 ओवरों में 182 रन किए थे, 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। पाकिस्तान ने ये 19वें ओवर में इस मैच को जीत लिया। सो गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान श्रीलंका के माबैन जो मैच था उससे पाकिस्तान ने जीत लिया। अच्छा, कुछ मैसेजेस हैं उनको शामिल करते चलें। कौन है हमारे साथ, कहाँ से है? मरीना हमारे साथ हैं, कहती हैं वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिस्मा आज़म कहती हैं उफ़ ये कॉलर। अब पता नहीं है किसके बारे में आप कह रही हैं। कौन है जी? मोहम्मद आसिफ इस वक्त हमें सुन रहे हैं, गुड शो, थैंक यू सो मच आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी रमज़ान सिराज कहते हैं चांद मिस यू हैं। ये कौन है भाई, किसको कह रहे हैं?

0: अच्छा किधर चले गए आप, गायब हो जाते हैं मैसेजेस। अच्छा नज़ीर हमारे साथ हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मा कहती हैं हाय हाउ आर यू, बहुत शुक्रिया। साजिदा इस वक्त हमें सुन रही है, सज्जाद अली लाडला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू द शो सद बिस्मिल्लाह। जी आनू अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और काफ़ी दिन बाद आपको सुन रहा हूँ और आपको सुन के अच्छा लग रहा है। चलें बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत दिन के बाद सुना, हमें भी अच्छा लगा आपको पढ़ के। बिस्मा कहती हैं बहुत थैंक्स टाइम देने का, बाकियों को भी। अच्छा चलें बहुत शुक्रिया बिस्मा, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल होने का। सज्जाद अली लाडला हमारे साथ हैं, ज़बरदस्त शो, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। अच्छा आपको भी हुआ था, अच्छा तो जो भी आ रहा है उसको हुस्न की देवी से किस किस को प्यार नहीं हुआ, आपको तो नहीं हुआ, आपको हो भी नहीं सकता। अच्छा जनाब कौन है हमारे साथ, कौन है नज़ीर, थैंक यू सो मच। रिहाना हमें सुन रही है उस वक्त, अस्सलाम वालेकुम रिहाना खान भक्कर से, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हफीज़ रहमान हमें सुन रहे हैं, हफीज़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101 के ऑफिशियल पेज पे आप हमें मैसेजेस करें, लेकिन आप हमें ज़रूर बताइए कि ज़िंदगी में जो कामयाबी है, सक्सेस ऑफ लाइफ, आप कैसे देखते हैं, आपकी नज़रिए के मुताबिक, आपकी थॉट्स के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपके गुमान के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आप कैसे सोचते हैं कामयाबी को, सक्सेस को। हर बंदे की ज़िंदगी के अपने पैरामीटर्स होते हैं, हर बंदा कामयाबी को अपने अंदाज से देखता है। कोई कुछ लोग कामयाबी को ऐसे देखते हैं ना, वो कहते हैं कि यार एक बंदा जिसके पास अच्छा कारोबार है या अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, वेल ऑफ है, चीज़ें हैं, वो उसको कामयाब समझ रहा होता है। कुछ लोग समझते हैं कि कामयाब वो है जो सेटिस्फाइड हैं अपने अपने दिमाग से, अपने दिल से, यानी कि जो कुछ भी उनके पास है उस पर वो राज़ी हैं, वो कामयाब है। कुछ लोग ये समझते हैं कि कामयाबी जो है ना वो आपको, यानी कि आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो अगर आपसे मुतमिन हैं, आपका हल्का अहबाब जो है वो आपसे खुश है, आप मिजाज आपका अच्छा है, इखलाक आपका अच्छा है, आप अच्छा सोचते हैं, आपसे लोगों को खैर मिलती है, वो भी एक कामयाब इंसान है। सो हर बंदे की पैरामीटर्स कामयाबी के डिफरेंट हैं। सो हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक सोचता है। आप कैसे सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। 04221100101 पे आप लोगों की कॉल्स और आप लोगों के मैसेजेस FM 101 के ऑफिशियल पेज पे हमें मौसूल हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं। सो ज़िंदगी के बारे में ना अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जो आप इस पे दुनिया में बड़ी रिसर्च हो रही है और बहुत काम हो रहा है गुमान के ऊपर, ख्याल के ऊपर, सोच के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर। सो अगर हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा ख्याल, हमारी सोच, ख्याल अच्छा है ना, ज़िंदगी अच्छी है, हालात अच्छे हैं। ख्याल अगर ठीक नहीं है तो ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल हैं। ख्यालात को कंट्रोल करना, ख्यालात पे काबू पाना, ख्यालात को फ़िल्टर करना, ख्यालात को प्योरिटी के अंदर लेके जाना, ये इंसान के इख्तियार में है। आगे हमारे एक कॉलर आए थे ना, कहते हैं इंसान यकीनी तौर पे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम मखलूकात से अशरफ है, तो उसका ख्याल भी उतना ही अशरफ, इतना ही ज़बरदस्त है। सो जनाब ख्याल बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए यह है कि एक बड़ी इंतहाई अहम चीज़ यह है कि आपका गुमान साथ में बहुत अच्छा होना चाहिए। सो गुमान बहुत अच्छा होना चाहिए। इस पर अल्लाह ताला कहता है ना कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, यानी जहाँ पे आपको स्ट्रेस मिले, कोई टेंशन मिले, एन्जाइटी हो, किसी जगह ज़िंदगी में लगे कि यार जो प्रॉब्लम है कुछ ऐसा है जो आपसे हल नहीं हो पा रहा, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो दैट इज़ अ मोमेंट कि हमने ना उम्मीद नहीं होना अल्लाह की रहमत से। उसकी रहमत बहुत बहुत बड़ी है। हम इंसान है ना, अपनी ज़ात के बारे में बहुत सी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अपने रब के बारे में भी, लेकिन उम्मीद के साथ कोशिश भी होनी चाहिए, दुआ भी होनी चाहिए, सब्र भी होना चाहिए और दुरुस्त अमल बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन जो है ना उसको देखना बड़ा इम्पोर्टेंट कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जहाँ पे हम अल्लाह के बारे में, अल्लाह की ज़ात से हमेशा अच्छा गुमान रखते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ना, तुम जैसा गुमान रखोगे हम तुम्हें वैसी तुम्हें ज़िंदगी दूंगा। तो इसके साथ साथ हमें दूसरों के बारे में भी जो बेबुनियाद बदगुमानी है ना, बदगुमानी, उससे जो है ना वो रुकना चाहिए। और बहुत से गुमानों से बचने की जो है ना हदायत भी दी गई है, क्योंकि बाज़ गुमान जो है ना वो गुनाह बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम,
1: क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक,
0: अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा?
1: जी मैं मोहम्मद आमिर भट्टी बोल रहा हूँ
0: जी, लाहौर से। मोहम्मद आमिर साहब, कैसे हैं आप?
1: जी जी बस दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह का करम एहसान जो घड़ी गुजर जाए।
0: नहीं मेरी बस दुआएं नहीं, मेरी भरपूर दुआएं आपके साथ।
1: नहीं नहीं, मैं मेरी आपके सबके लिए दुआएं हैं।
0: नहीं आपने कहा बस दुआएं हैं, मैंने कहा नहीं भरपूर दुआएं हैं
1: आपके साथ। भरपूर दुआएं जी, हां जी दुआएं अल्लाह ताला जो घड़ी गुजर जाए वही अच्छी।
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: ये जिंदगी है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: जिंदगी है, जिंदगी में सब कुछ चलता है,
0: सब घड़ियां अच्छी हैं जी, हर घड़ी अच्छी होती है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, घड़ी अच्छी होती है, बल्कि घड़ी अच्छी वो होती है जो अच्छी बना ली जाए, अच्छी बना ली जाए तब ये बात होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जिंदगी के बारे में आपने बात की ना अभी, तो ऐसी बात मैं ये बात करना चाह रहा था, मेरे दिल में जहन में बात आई कि बात ये है कि जिंदगी वो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना इंसान को मुखातिब होकर कि अफसोस क्या इंसान, तू एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में आज तुम कब्रों में आके लेट गए और तुम भूल ही गए कि मैंने तुमको किस लिए बनाया। हम लोगों ने जिंदगी को खुद मुश्किल बना लिया,
0: बेशक,
1: क्योंकि हम हकीकत भूल गए कि जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी किस लिए थी।
0: बेशक,
1: जब तक हम उस चीज के पीछे नहीं चलेंगे, जब तक हम उस चीज के ऊपर अमल नहीं करेंगे जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने बनाया था
0: सर,
1: वो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। आज अगर आप किसी से बात करते ना, यार ये काम ऐसा नहीं है तो ऐसा, नहीं नहीं नहीं सर जी छड़ो इस्लाम तुम फिलहाल छोड़ दो, जो मैं मौजूद से गल कर रहा हूं उसी से गल करो। तो भाई आप किस चीज में इस्लाम अपने मजहब को पीछे कर सकते हैं? आपका पैदा होना, आपका बचपन, जवानी, खाना पीना, नहाने के आदाब, बाथरूम में बैठने के आदाब, खाने खाने के, सफर करने के, हर चीज में तो आपको बताया गया इस्लाम।
0: बेशक,
1: आप कैसे पीछे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं? मैंने आप इन्हीं चैनलों पे मैंने बात करते हुए सुना है, जब वो कोई कॉलर बात करना चाहता है तो उसको कहते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं जी छोड़ो जी, उसको एक साइड पर रखो, जो बात कही जा रही है उसकी बात करे। और भाई ये तो आपकी जिंदगी है किसके लिए? आप तो अपने असल के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है।
0: बिल्कुल ठीक सर।
1: और अफसोस मैं जाते जाते सिर्फ एक बात कहूंगा, अफसोस सिर्फ इस चीज का है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अलहम्द से लेके वन्नास तक दुनिया में रहने के सारे तरीके बता दिए। हमने हाफिज तो हम बन गए, कुरान हिफ्ज तो हमने कर लिया, लेकिन कुरान के अंदर बताया ये क्या गया वो नहीं हम पढ़ सके।
0: बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया।
1: वो नहीं पढ़ेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते
0: सर। जीते रहे, बहुत प्यारी बात।

0: तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, वो भला चांद सितारों को कहां देखेगा। रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारे को कहाँ देखेगा। वेलकम बैक जी, और बहुत शुक्रिया आपका जी, आप लोगों के मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, कॉल मौसूल हो रही हैं, और ये स्पेशली ये जो पोइट्री थी शफक ने मुझे भेजी थी कि जी आपने इसको पढ़ना है अपनी आवाज़ में, हमने शामिल कर दिया। बहुत शुक्रिया शफक, बहुत सलामत रहें, जीती रहें, यू आर सच अ टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंट है और मैं हमेशा टैलेंट की बहुत कदर करता हूँ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ा फर्टाइल बनाया और बड़े टैलेंटेड लोगों से नवाजा है, तो अल्लाह ताला इस मुल्क को भी सलामत रखे, इस मुल्क में जो टैलेंट है, जो यूथ है, जिस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। एक कॉलर है, फिर उसके बाद एक ट्रैक मैंने लाइनअप किया हुआ है, वो चलाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नज़ीर, क्या नहीं बोल रहा हूँ
0: जी। नज़ीर भाई, कैसे मिजाज हैं आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। फरहान साहब, आप खैरियत से हैं?
0: सर अल्हम्दुलिल्लाह, बेपनाह इनायत है मेरे रब की।
1: कॉल तो मैंने तकरीबन सुनी है, प्रोग्राम में शुरू से सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे लुत्फ उस वक्त आया
0: सर
1: जब एक दोस्त ने कॉल की और कहा मेरे अब्बू जी भी साथ बैठे हैं।
0: अब्बू जी ने अपनी पोइट्री भी सुनाई है,
1: और पोएट्री भी सुनाई, बहुत जबरदस्त उन्होंने पोएट्री भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सुनाई। और मैं महसूस कर रहा था कि कैसे साथ बेटे भी बैठे हैं, साथ अबू भी बैठे हैं, और वो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये आपके प्रोग्राम की मैं कहता
0: हूँ उनकी मोहब्बत तो, है
1: क्या बात,
0: उनकी मोहब्बत है। और ये मैं कहता हूँ कि आज के दौर में ना ये हारमोनी, ये मोहब्बत, ये बेतकल्लफी बाप और बेटे की होनी चाहिए, और मिजाज भी मिलने चाहिए, और उनके टेस्ट भी मिलने चाहिए, और उनकी जो लाइकिंग है ना, डिसलाइकिंग भी मिलनी चाहिए। बड़ी इम्पोर्टेंट है काफी चीजों में।
1: मुझे बहुत मतलब है बाप बेटों की बातें सुन के, और बोले मेरे अब्बू जी कुछ शेर सुनाना चाहते हैं, अब्बू जी भी बोले क्या बात है, क्या बात।
0: अच्छा आपने नोट किया है।
1: तो बात यह है कि फरहान जी, असल में इंसान हम लोग जो है ना, अल्लाह ताला ने इतना कर्म किया है हम पर, इतना कर्म किया है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि हमें मुसलमान घर में पैदा किया,
0: बेशक बेशक।
1: उसके बाद नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया,
0: बेशक।
1: यार ये हम, हमारी इसमें कोई मेहनत नहीं है, हमारी कोई इसमें यानी
0: कमाल नहीं है, हमारा कोई कमाल, मेहरबानी है अल्लाह की, अल्लाह की रहमत,
1: अल्लाह की करम, अल्लाह की करम,
0: बेशक।
1: तो कामयाब तो हम यहीं से हो गए ना।
0: वाह वाह,
1: कामयाब तो हम यहीं से हो गए।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत मेरी बात।
1: इससे बड़ी कामयाबी आपको और क्या मिल सकती है?
0: बहुत खूब,
1: एक मुसलमान घर में आप पैदा हुए और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए।
0: बेशक,
1: किसी घोड़े के बाहर भी आपको पैदा कर सकता था, किसी हिंदू की घर भी पैदा कर सकता था, ये उसकी मेहरबानी है। आप कामयाब ही कामयाब है।
0: वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत प्यारी बात की,
1: बहुत शुक्रिया
0: सर, बहुत शुक्रिया।
1: बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है आपके प्रोग्राम में, और यही प्रोग्राम की जो है ना, यही यानी बात है कि जो प्रोग्राम जिसमें कॉल मुश्किल से मिलती है ना, वो हर दिल अजीज
0: सर आपकी मोहब्बत है,
1: हर बंदे का चाहता है कि कॉल की जाए।
0: सर आपकी मोहब्बत है, सलामत रहें, सलामत रहें,
1: खुश
0: रहें, जीते रहें, अल्लाह हाफिज। और जनाब बहुत खूबसूरत बात की, ये सच में बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला का करम है ये। अस्सलामुअलैकुम।
2: अस्सलामुअलैकुम
0: जी। वालेकुम सलाम।
2: फरहान भाई क्या हाल है?
0: अल्लाह का शुक्र सर, कौन कहां से?
2: बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
0: सर
2: नूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर से।
0: जी जी जी जी, नूर भाई कैसे मिजाज हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात हो रही थी कामयाबी की
0: सर,
2: तो बहसियत मुसलमान हमारे दो कुके हैं, एक कुकुल्ला है, एक कुकुलिबाद
0: सर।
2: कुकुल्ला तो अल्लाह और बंदे का मामला है
0: सर, सर सर,
2: और जो कुकुलिबाद है रिश्ते आ जाते हैं सारे
0: सर।
2: तो मेरा ख्याल है इंसान की जिंदगी बड़ी मुख्तर है,
1: जो रिश्ते टूटे हुए हैं ना,
0: जी जी जी,
1: जो आपसे नाराज हैं, मुझसे से जिंदगी है, उनको मना लीजिए। बाद में फिर अगर कब्रें रह जाती हैं या फिर पछतावे रह जाते हैं, तो असल कामयाबी यही है कि हमारे जो रिश्ते हैं ना वो कायम रहने चाहिए। और जाते जाते मैं आपके दोस्त भी हैं अब्बास ताबिश, उनके चंद शेर।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: सुकूते दहर रगों तक उतर गया होता,
0: वाह वाह वाह,
1: अगर मैं शेर न कहता तो मर गया होता। ये उम्र तुमने मुझे दी सही अना करके, बला ये तन से न जाती तो सर गया होता।
0: वाह वाह वाह।
1: समेट रखा है अपने ही खौफ ने मुझको, अगर मैं खाक ना होता बिखर गया होता।
0: हाय हाय हाय।
1: अगला शेर, मुझे कलाम पे मजबूर अगर ना करता दिल, मेरा सुकूत कोई काम कर गया होता। त्याग देते अगर हम मकालमा उसे, हवाए तेज तेरा शोरो शर गया होता। यहाँ जो ऊंची फसीलों से पेड़ झांकते हैं, अगर मैं इनकी जगह होता डर गया होता। दो शेर और
0: जी।
1: तुम अपनी सालगिरह पे ही खोलते पिंजरे, उजाड़ दिन तो परिंदों से भर गया होता। और लगता है वो एक ही नाम था अश्क तो ना था ताबिश, मैं कोई रोज उसे जब्त कर गया होता। सुकूते दहर रगों तक उतर गया होता, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता।
0: मर गया होता।
1: दुआओं में याद रखें। जी मान
0: सर, बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें।

0: RJKB is here with you on 101 International. Live every Monday and Friday from 12 to 2. Turn up the volume.
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई प्रोग्राम रब के बाबरकत नाम से, उस नाम से जिसके कब्जा है कुदरत में गुलजीरों की जान है, उस नाम से जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राजिक है, हम सब के रिस्क की तकसीम का मालिक है, जिस समंदर के अंदर पहाड़ कामत मछलियों का पेट भरता है और पत्थर के अंदर कीड़े को सब्ज पत्ता खिलाता है। आगाज गुफ्तगू, आगाज कलाम, आगाज प्रोग्राम रब के उस बाबरकत नाम से जिसने हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया, उसके अंदर मुख्तलिफ ट्रेट्स पैदा किए, मुख्तलिफ सलाहियतें पैदा की, हर एक को दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया। है ना वो कारीगर, है ना वो सभी कुछ करने वाला और वो सभी के ऊपर कामिल कुदरत रखने वाला है। और उस कामिल कुदरत रखने वाले के रब के नाम के, उस रब के नाम के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज चाहता हूँ। और प्रोग्राम को कहते हैं 101 इंटरनेशनल। 101 इंटरनेशनल आपके साथ होता है जी हर फ्राइडे और मंडे की नाइट को, और आज फ्राइडे की नाइट है और हफ्ते का आगाज है और 12:04 हुए चाहते हैं, 10 अक्टूबर है, 2026 है। 101 इंटरनेशनल इस प्रोग्राम को कहते हैं, मुझे आज के भी कहते हैं जी। आज के भी का साथ आपके साथ रहेगा 12 से लेकर 2 बजे तक, और आपका साथ मेरे साथ रहेगा फेसबुक के ऊपर और आपकी टेलीफोन कॉल्स के ऊपर और उसके साथ साथ 4471 के ऊपर रहेगा। और आज मैं जो मौजू लेके आया हूँ, अरे कमाल मौजू लेके आया, मेरी अपनी पसंद है, शौक है वो, और मैं वो करता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ और उसके बारे में मालूमात भी रखता हूँ। तो आज मेरे एक लिसनर ने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया कि जी केबी साहब, आज ना आप ये वाला मौजू रखें, इसके हवाले से तो ज़रा बात करें। वैसे आपने अपने बायो में लिखा होता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है, नहीं होता, इसके ऊपर बात करें। हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से होता है, क्या होता है, ये क्या साइंस है और क्या इसमें कितनी सदाकत है, किस तरह से ये होता है और क्या हमें करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और हमें किस हद तक मालूम होना चाहिए। इस हवाले से, जिस हवाले से मैंने आपसे आज बात करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है और आज का प्रोग्राम उसी मौजू के ऊपर होगा। और बड़ी ज़बरदस्त आज गेम्स भी हम खेलेंगे और इस हवाले से ना हम थोड़ा सा अपनी ब्लूम दोस्त से भी पूछेंगे कि ब्लूम क्या कहती है इस हवाले से, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, और आप अपने तजुर्बात मुशाहिदात मेरे से शेयर करेंगे, मैं आपके साथ अपने करूंगा। तो साथ रहेगा मेरा आपके साथ जी 2 घंटे तक, और बेहतरीन साथ रहने वाला है अगर आपने साथ बेहतरीन तरीके से निभाया तो। हाँ, जितने रेड फ्लैग्स है ना, रेड फ्लैग्स आपने बिल्कुल साइड पे रखने हैं, टेबल के नीचे रखने हैं, उठा के बाहर फेंक देने हैं, आग लगा देनी है भाई, आग लगा देनी है, ठीक है ना, आग लगा देनी है। और जो ग्रीन ग्रीन फ्लैग्स है ना, वो सारे आपने आना है और प्रोग्राम को में पार्टिसिपेट करना है, और पार्टिसिपेट करके आपने अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाना है और उसके ऊपर बात भी करनी है, मौजू के ऊपर भी बात करनी है। टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। आज हम बात करेंगे जी चेहरा शनासी के ऊपर, कि चेहरा शनासी क्या होती है और चेहरों से हम दूसरों के बारे में किस तरह से मालूमात हासिल करते हैं, दूसरों के बारे में किस तरह से हम अपनी जजमेंट्स पास करते हैं, किस तरह से अपने तजुर्बात के ज़रिए हम दूसरों का चेहरा पढ़ते हैं, और चेहरा पढ़ने में कितनी महारत होती है किसी को, और किसी किसी को अगर होती है तो कैसे होती है, और साइंस क्या कहती है उस हवाले से, और रियलिज्म क्या कहता है, और ये कब से है, और इसके अंदर क्या आपको फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, हाँ इसके नुकसानात भी होते हैं, इन सभी बातों से ऊपर से आज जो है वो पर्दा उठाएंगे और सभी बातें जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आज जो है वो मैंने आज फेस रीडिंग के हवाले से आपसे बात करनी है और बड़ी मज़ेदार बात करनी है आपसे। इसको इंग्लिश में फिजियोइकोनॉमी भी कहते हैं जी। फिजियोइकोनॉमी एक पूरी साइंस है, एक नॉलेज है कि चेहरा कैसे पढ़ा जाता है, चेहरे के जो खदोखाल होते हैं वो आपकी ट्रेट्स को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपको कैसे जो है वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, क्या करते हैं आप, किन चीज़ों को पसंद करते हैं आप, कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी, ये आपका चेहरा ज़रूर ज़रूर बता रहा होता है। क्या आप सोचते हैं, किस तरह से आपकी अप्रोच है, आप पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, आप दुनिया को किस तरह से लेते हैं, जज्बाती हैं, या आप कूल माइंडेड हैं, आप पॉलिटिकल हैं, या आप इंटेलिजेंट हैं, या आप मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, आप पॉलिटिसाइज चीज़ों को करना चाहते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, आपका वे ऑफ सीइंग क्या, आपका एंगल क्या, आपकी आंख के अंदर लेंस कौन सा है, और वो लेंस से मुराद वो वाला लेंस नहीं है, लेंस से मुराद ये किसी भी चीज़ को देखने का एक लेंस होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं इस वक्त एक टीवी को देख रहा हूँ तो मुझे पहली नजर के अंदर उस टेलीविजन के ऊपर ब्लू कलर नजर आ रहा है और रेड कलर नजर आ रहा है। अब कोई और इसको अगर देखेगा तो उनको दो साहब नजर आएंगे, दो साहब जो है वो एक उनको मोटा नजर आएगा, एक पतला नजर आएगा। कोई और देखेगा तो उसको दूसरे वाले साहब के सामने माइक नजर आएगा। कोई और देखेगा तो पहले वाले साहब की दाढ़ी की सफेदी के ऊपर वो जाएगा। तीसरे वाला जो पांचवें वाला अगर शख्स देखेगा तो वो शायद उसके बैकग्राउंड के ऊपर गौर करे। तो हर इंसान का जो लेंस होता है वो डिफरेंट होता है दूसरों से। जैसे मैंने शुरू में कहा कि रब ने हम सबको दूसरों से मुख्तलिफ बनाया, हमारे जज्बात मुख्तलिफ होते हैं, एहसास मुख्तलिफ होते हैं, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं ज़रूर, सारी की सारी नहीं भी होती। हम इंसान बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर भी होते हैं लेकिन कुछ चीज़ों में मुख्तलिफ भी होते हैं। तो ये उसी की कारीगरी है कि उसने हर इंसान को पहले आदम से लेकर आज तक जितने इंसान आए हैं, जो अभी एक सेकंड पहले बच्चा पैदा हुआ उसको भी सबसे मुख्तलिफ पैदा किया। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं कि जो हम सब में मुख्तलिफ होती हैं। जो आप सुनने वाले हैं आप सब में ज़रूर मुख्तलिफ हैं, आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसानों में से सिर्फ एक इंसान है और जो चीज़ें आप में हैं वो किसी और में नहीं है। है ना कमाल की बात। वैसे हम अपने आप को कभी कभार बहुत अंडरएस्टिमेट कर जाते हैं कि यार मैं मेरे जैसे तो बहुत हैं, मेरे जैसे तो हज़ारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि यार हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों में मैं एक अकेला हूँ, जो मुझ में है वो किसी और में नहीं है। आज ना बहुत ही जो है ना वो डेप्थ वाली बातें होंगी, तो डेप्थ वाले लिस्नर हैं जी वो सारे आज इकट्ठे हो जाएं। आज दो घंटे आपके साथ ज़बरदस्त गुफ्तगू होने वाली है और आपके भी हम पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम में शामिल करेंगे। के भी आपके साथ है, मुझे आज के भी कहते हैं, मेरे साथ रहिएगा। गाना सुनाऊंगा जी, गाने भी सुनाऊंगा, ये वाला सुनाता हूँ।

हाँ जी फरहान साहब कहते हैं चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, वो कह रहा था मैंने रोजा रखा हुआ है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, वो कह रहा था मैंने रोजा रखा हुआ है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन कयाम करके देखते हैं। सुना है हश्र में उसकी गजाली सी आंखें, सुना है उसको हिरने दश्त में हम अहम करके देखते हैं। कितनी दिलचस्प हो गई होती जो कहानी हम आईना होते, कितनी दिलचस्प हो गई होती जो कहानी हम आईना होते, तुम जब आते तो खोया हुआ पाते मुझको, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं।

और तुझको देखा है तो ये मालूम हुआ चेहरे पर भी किताब होती है, उसके चेहरे की चमक के आगे चांद की रोशनी भी मध्यम है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। आंखें बताती हैं कि दिल किस कदर उदास है, चेहरे के तबस्सुम पे ना जा, ये तो एक निकाब है। और कुछ लोगों का चेहरा निकाब होता है और कुछ लोगों का चेहरा खुली किताब होता है, और अक्सर सभी का चेहरा खुली किताब होता है। हम सबको नहीं आता वो सब छुपाना जो होता है हमारे अंदर। और कुछ होते हैं ना मेरे जैसे, उनके बारे में कहा जाता है हर एक चेहरे को पढ़ता हूँ दास्तां की तरह। मुझसे छुपती नहीं दिल की बात चेहरे से, हर एक चेहरे को पढ़ता हूँ दास्तां की तरह, मुझसे छुपती नहीं दिल की बात चेहरे से। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और कह रहा था मैंने रोजा रखा हुआ है। आईना देखकर बोले कि सवारने वाले अब तो बेसाख्ता बोल उठेंगे मरने वाले। आंखें बताती हैं कि दिल किस कदर उदास है, चेहरे के तबस्सुम पे ना जा, ये तो एक निकाब है। अच्छा जी, हम जो भी कर रहे होते हैं, जो भी सोच रहे होते हैं, और जिस तरह से हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और जिस तरह से फैसले ले रहे होते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे चेहरे पे बहुत आता है। हम अगर मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, स्ट्रेस में, एंजाइटी में अगर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हमारे चेहरे के जो खदो खाल हैं वो बड़े बदलते रहते हैं। उनके अंदर तनाव भी आता है, कहीं कोई अगर हम सुकून से गुजार रहे हैं या अगर हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी नहीं है तो फेस रिलैक्स भी होता है। अच्छा, उसके साथ साथ चेहरे के जो खदो खाल हैं उनके अंदर, उनकी बनावट के अंदर भी बड़ी चीज़ें छुपी होती हैं, हमारे ट्रेट्स पर्सनैलिटी के बड़े छुपे होते हैं। किस तरह की हमारी पेशानी है वो हमें बता रही होती है कि इस तरह की जो पेशानियों के लोग होते हैं ना, वो मोस्टली इस तरह से होते हैं। इस तरह से अगर हमारे होंठ हैं तो इस तरह से हम होते हैं, इस तरह से हमारी नाक है अगर उसकी बनावट इस तरह से है तो वो उस तरह से लोग होते हैं। अगर चेहरे की बनावट जो है वो अगर उस तरह से है तो फिर आप उस तरह से होते हैं। वो उस तरह से, इस तरह से क्या है, वो क्या है कि जी बस वो इस तरह से है। कि हमारे चेहरे की बनावट, हमारे कान, हमारे होंठ, हमारा चेहरा, हमारे इवन कान के जो लूब्स होते हैं, या हमारे पेशानी, या हमारी आंखें, आंखों की बनावट हमारी अंदर की छुपी पर्सनालिटीज को बता रही होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको सिखाऊंगा, मजेदार सिखाने वाला हूँ आज आपको। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनको आप पहचानना चाहते हैं, उनको आप तकरीबन अगर आप 100% ना कहें, अगर 50% ना कहें, तो 40% आप इन ट्रेड्स से पहचान सकते हैं कि उनकी मेजर पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, वो किन चीज़ों को पसंद करते हैं, गुस्से वाले हैं कि नहीं हैं, वो नरम दिल हैं कि नहीं हैं, वो इंटेलिजेंट हैं कि नहीं हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं कि नहीं हैं, वो क्रिएटिव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो चले एक गेम करते हैं, और गेम ये करते हैं कि जी आपने मुझे कॉल करनी है, और कॉल करनी है 0511111001 के ऊपर, और उसके साथ 920-25-40 के ऊपर, और एक चीज़ आप अपने फेस के ऊपर से मुझे बताएंगे कि लेट्स सपोज अगर आप अपने चेहरे की बनावट के ऊपर बात करना चाहते हैं, और आप मुझे बताएंगे कि आपके चेहरे की बनावट किस तरह से है, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह की बनावटें होती हैं, और आप मुझे बताएंगे कि मेरा फेस जो है वो मुझे लगता है कि इस तरह से मेरा फेस है, तो मैं आपको आपके फेस के मुताबिक बताऊंगा कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं, और फिर आपने मुझे बताना है कि क्या मैंने आपको ठीक बताया या नहीं बताया। हो गया ना मज़ेदार वैसे। और आप फेस के अलावा आप मुझे फोरहेड बता सकते हैं कि आपका माथा किस तरह से है, मैं आपको माथे की जो है वो एग्जाम बताऊंगा। चेहरे की 6 किस्में होती हैं, माथे की तकरीबन 6 किस्में होती हैं, आंखों की 5 किस्में होती हैं, इस तरह आपके जो नाक की 4 किस्में होती हैं, होंठों की 4 किस्में होती हैं, और इसी तरह आपके कान की 4 किस्में होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने आपके पास ऑप्शंस हैं, और किस किस तरह से हैं, और आपको क्या लगता है कि आपका जो फेस है, जो नाक है, कान है, आँख है, या होंठ है, वो किस तरह से हैं। और फिर मैं आपको, आपने भी बताना कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, और फिर आपने मुझे बताना है कि क्या मैंने आपको ठीक बताया या नहीं बताया। कितना मजेदार हो गया ना वैसे। अच्छा, ये वैसे अमूमन मैं करता हूँ, और इसको मैंने सीखा भी, मैंने पढ़ा भी बहुत ज्यादा इसके बारे में, और ये बहुत पुराना इल्म है, और
जैसे मैंने आपको बताया, इसे फिजियो इकोनॉमी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और ये बहुत बहुत तारीखी इल्म है। इसके ऊपर जो है वो चाइना के अंदर भी इसको खास जो है वो सिखाया जाता है, सीखे जाता है। यूनानी इल्म भी है, इसको यूनान के अंदर भी बड़ा सिखाया जाता था। इसके ऊपर एरिस्टोटल ने बड़ी किताबें लिखी हैं। इस्लामी रवायात में इसको इल्म फिरासा कहते हैं, और इल्म फिरासा के ऊपर भी जो है वो इमाम फखरुद्दीन राजी ने जो है वो इसके ऊपर किताब लिखी है। और यूरोप के अंदर जो है वो 1886 के अंदर जो है वो ये इल्म बड़ा मशहूर होता था, और बादशाह जो है वो स्पेसिफिकली फीस रीडर्स को अपने दरबारों में रखा करते थे, और उनसे जब भी कोई डील करते थे किसी दूसरी रियासत के साथ या किसी उसके साथ, तो या कोई मशवरा करते थे या किसी इंसान के बारे में उसके साथ कोई बात करते थे या कोई उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन करनी होती थी, तो वो उस फेस रीडर से मशवरा लिया करते थे कि इसका चेहरा क्या बताता है या इसको तुम्हें देख के क्या लगता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और 1775 से लेके 78 तक जो है वो उसके ऊपर काफ़ी बड़ी जो है वो रिसर्च भी हुई, उसके ऊपर काम भी हुआ, और लोगों ने उसके ऊपर किताबें भी लिखी। लेकिन साइंस ने जो है वो क्या कहती है इसके बारे में? साइंस ये कहती है जी कि इसको क्रिमिनोलॉजी के साथ भी बाद में जोड़ा गया 1700 में, और फिर 19वीं सदी के अंदर भी जो है वो इसको क्रिमिनोलॉजी और बाकी चीज़ों के साथ जोड़ा गया, लेकिन पता चला कि इसके अंदर बड़े लूज लूप्स हैं। बाज़ औक़ात आपको लगता है कि यार ये ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं होता। सो इसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो इक्तफा नहीं किया जाने लगा, और नफ्सियात के ऊपर भी जो है वो काफ़ी सारा इसके ऊपर काम किया गया, और पहली नज़र में जो है वो देखा गया कि किस तरह से लोग कैसे दिखते हैं, और बाद में पता चला कि वो उस तरह से नहीं दिखते या उस तरह के नहीं होते जिस तरह हमें पहली नज़र में दिखते हैं, जो ट्रेट्स बताए जाते हैं। इसमें एम्बिगुटीज़ हैं, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस इल्म को बहुत तारीख से जो है वो देखा जाता है, सीखा जाता है, और उसके ऊपर काफ़ी बातें होती हैं। सो मुझे आज से तकरीबन ये कोई 15 साल पहले शौक चढ़ा था, और मैंने बड़ी किताबें उसके ऊपर पढ़ी, बड़ी रिसर्च की। सो इसका मुझे बड़ा फ़ायदा भी हुआ, मुझे अपनी सोशल लाइफ के अंदर बड़ा फ़ायदा हुआ, और मुझे लगता है कि मैं जिसके बारे में एक अपनी गट फीलिंग कायम करता हूँ इस इल्म के मुताबिक, और जो मैंने पढ़ा जो मैंने सीखा उसके मुताबिक अगर मैं उसको अप्लाई करता हूँ, तो 30-40% शायद मैं पहुंच जाता हूँ चेहरा देख के कि यार ये इस तरह से उसके ट्रेड्स होते हैं, और 30-40% वो हमेशा दुरुस्त होता है, मुझे लगता है ऐसा। मे भी ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि 30-40% या 50% में किसी के बारे में पहली नज़र में राय कायम कर सकता हूँ कि ये किस तरह से इसकी पर्सनालिटी है। और फिर जब वो बोलता है, बात करता है, तो बात करने से 10-1% और मज़ीद समझ में आ जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा यार ये इस तरह का इंसान है। और फिर जब उसके साथ थोड़ा वक्त गुजरता है, 1 दिन 2 दिन जब खाना खाया उसके साथ या ट्रैवल किया, तो 20% मज़ीद आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है कि यार ये किस तरह का इंसान है। और फिर आपने अगर उसके साथ मज़ीद वक्त जब आप गुजारते हैं, तो ये परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन आप किसी भी शख्स के बारे में 100% नहीं मालूम कर सकते कि उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, क्योंकि इंसान बदलता रहता है। जैसे जैसे उसके तजुर्बात, मुशाहिदात या उसके इर्द गिर्द की चीज़ें बदलती हैं, उसकी ज़िंदगी में इंसिडेंट्स आते हैं, क्योंकि इंसान भी सीखता रहता है, और जैसे जैसे वो नई चीज़ें सीखता है वैसे वैसे अपने अंदर अपनी क्वालिटीज़ को भी चेंज करता रहता है। तो पहले अगर आपने किसी शख्स के बारे में एक राय कायम की कि ये ऐसा शख्स है, तो मे बी वो उस वक्त वैसा हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो वैसा ना रहे। उसकी वजह ये होती है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो उसको चेंज कर देता है। और फिर आप कहते हैं नहीं यार मैंने तो उसके बारे में ये सुना था, आपने तो तुमने तो ये बताया था इसके बारे में ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और वो ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो उस वक्त ऐसा था शायद, लेकिन अब नहीं है। तो आज की जो बातें होंगी जी, इन सारी बातों को आपने मद्देनजर रख के जो है वो ये बातें करनी है, और कोशिश करेंगे जी कि आज का प्रोग्राम बहुत मज़ेदार हो। सो आपको मैं, आप जो लोग कॉलर्स आएंगे और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे वो मुझे बताएंगे, खुद चूज़ करेंगे कि वो चेहरे पे बात करना चाहते हैं, पूरा चेहरे की जो जो उनका फेस का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, या वो बात करना चाहते हैं कि उनके फोरहेड माथे के बारे में अगर वो बताना चाहें, तो एक आध आपने कोई अपने फेस का ट्रेट उठाना है उसके ऊपर हम बात करेंगे, या आप आईब्रोज के बारे में अगर बात करना चाहते हैं, आंखों के बारे में बात करना चाहते हैं, नोज़ के बारे में अगर आप मुझे बताना चाहते हैं, अपने लिप्स के बारे में बताना चाहते हैं, थोड़ी के बारे में, चिन के बारे में बताना चाहते हैं, अपने जबड़ों के बारे में बताना चाहते हैं, कान के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, सो एक आपने जो है वो अपना फेस के ऊपर कोई एक आध जो है वो ऑर्गन आपने उठाना है, और उसकी जो बनावट है उसके बारे में आपने मुझे बताना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा जी कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। लेकिन उसके ऊपर आपने 100% इक्तफा नहीं करना, ये जो मैंने शुरू में बातें की हैं इन सारी बातों को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है, इनको भूलना नहीं है आपने।
ये सारी बातें जो पहले मैंने की हैं आपके साथ, ये सारी बातें आपने मद्देनजर रखनी है, और ऐसा नहीं आपने सोचना कि ये जो पहले वाली बातें हजफ कर जाएं और नेक्स्ट वाली बातों के ऊपर आप यकीन करना शुरू कर दें और फिर आपको कहीं लगे कि नहीं यार ऐसा तो है नहीं है, ये ऐसे ही है, ये ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है जनाब, आज बात करेंगे जी फेस रीडिंग के ऊपर, और मेरे साथ रहिए, मुझे आज की भी कहते हैं, और मजेदार प्रोग्राम आज होने वाला है। 12:33 हुए चाहते हैं, आज हफ्ते का रोज शुरू हो चुका है और जुम्मे की रात है, 10 अक्टूबर 2026 है, और आप मुझे फेसबुक के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, कोई अगर मुझे फेसबुक पे तस्वीर भेजना चाहता है अपने कमेंट के अंदर, तो वो जरूर तस्वीर भी भेज सकता है। अगर कोई भेजना चाहता है तो वो भेजिए, और मैं उसकी तस्वीर देख के भी उसके ऊपर आपको ऑगमेंट्स या कमेंट्स आपको मैं पास कर सकता हूँ। थैंक यू बडीज। अभी बहुत सारे लोग आ चुके हैं फेसबुक में यार, आज सभी पसंद कर रहे हैं ना, और ये आपकी फरमाइश के ऊपर ही रखा गया ये टॉपिक।

0: के भी आपके साथ है जी, और आप मेरे साथ हैं। रेहाना मेरे साथ भक्कर से हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं और प्रोग्राम में खुशामदीद कह रही हैं। कोमल ईमान मेरे साथ यूएसए से हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं, कहती हैं आपका इंतजार कर रहे थे। अरे शुक्रिया कोमल। रूज मेरे साथ है जी, मुल्तान से प्रोग्राम सुन रही हैं, आवाज की तारीफ कर रही हैं। ताहिर अजीज मेरे साथ हैं जी, और राहत बानो मेरे साथ हैं रावलपिंडी से। मोहम्मद हफीजुर रहमान मेरे साथ मौजूद हैं। फरा अफजल आ चुकी हैं जी, कहती हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमाद खान है मेरे साथ इस्लामाबाद से। उज़्मा इजाज है मेरे साथ जी इस्लामाबाद से। और उज़्मा लिखती हैं, कभी अचानक आप में वो सफा जला डालने की जरूरत पैदा हो जाती है जिसे आप दोहरा करने से भी डरा करते थे। कभी अचानक आप में वो सफा जला डालने की जरूरत पैदा हो जाती है जिसे आप कभी दोहरा करने से भी डरा करते थे। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। सानिया गफूर है मेरे साथ लाहौर फिरोजपुरा से, प्रोग्राम सुन रही है। किंजा है मेरे साथ जी कराची से है मेरे साथ। और उज़्मा कहती है, खूबसूरती और बदसूरती का ताल्लुक रंग से नहीं, नजर और सोच से। ओके जी, पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी और इम्तिहान शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मोहतरम, कैसे हैं आप?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम खुश।
0: ओके जी, मुझे आपका माइक नहीं मिल रहा, कौन सा माइक है पता नहीं आपका। अच्छा, कहाँ से कौन सा आप बात कर रहे हैं?
1: लाहौर शादबाग से मोहम्मद नवीद यूसुफ बात कर रहा।
0: लाहौर शादबाग से मोहम्मद नवीद यूसुफ जी। नवीद यूसुफ क्या कहने आए हैं?
1: सर मैं यही कहना चाहूँगा, कहने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो सारी बातें को छोड़े, फेस वगैरह को, हर चीज को, आप मुझे अपने हाथों और पाँव की उंगलियां बताएं आपकी कितनी है।
0: मेरे हाथों और पाँव की उंगलियां
1: कितनी है?
0: 20।
1: और मैं आपको बता सकता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों और पाँव की 25 उंगलियां। आप सोचेंगे कैसे
0: कैसे?
1: टोटल 25 है ना, आप मुझे बताए ना कितने कितने मेरे हाथों और पाँव की उंगली।
0: अच्छा, टोटल मतलब आपकी 25 उंगलियां और टोटल कितनी है ये मैं बताऊं आपको?
1: हाँ जी, हाथों की कितनी होंगी और पाँव की कितनी होंगी?
0: ये आपको पता होगा, मैं थोड़ी आपकी उंगलियां और पाँव देख सकता हूँ।
1: सर मैंने दोनों हाथों की 6-6 उंगलियां।
0: अच्छा माशाल्लाह।
1: और एक पाँव की 6 है और एक की 7 है।
0: अरे वाह, इतनी उंगलियां क्यों रखी हुई है आपने? आपको कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती है उंगलियों की या किसी ने आपको दे दी उंगलियां?
1: नहीं, वो मेरे मालिक ने मुझे दी है, वो किसी को कुछ कोई चीज है ज्यादा खुश होकर देता था, वो मालिक मेरे ने खुश होकर दी है
0: मुझे। चलें फिर अच्छी बात है, अगर आपको उस तरह से मिली है तो फिर तो अच्छी बात है, वरना आपने किसी को अगर किसी को उंगली देने के लिए रखी नहीं है, आपको किसी ने उंगली दी है तो फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है।
1: मुझे ना बचपन से छह उंगली में जिसे कहते हैं छांगा कहते हैं।
0: आपको तो पचंगा कहते होंगे, पचंगा है ना?
1: हाँ जी।
0: अच्छा वाह जी वाह, कमाल है जी सर। फिर आप वेरी नाइस। अच्छा ये काबिल इस्तेमाल भी है या सिर्फ आप वैसे ही है आपके लिए?
1: सर जो मेरे पाँव की है ना वो तो हरकत वगैरह करती है, जो मेरे हाथों की है ना वो छोटी सी जैसे चीज ही नहीं होती, हल्की सी सिर्फ साथ लगा होता है, सिर्फ नाखून वगैरह भी है उसको।
0: अच्छा तो मतलब काम की नहीं है?
1: हाँ वो वैसे हलाऊ ना, मैं अभी भी अपना हाथ हला रहा हूँ, हाथ हिलाने से हिलती है, वैसे नहीं हिलती।
0: अच्छा तो सर उसको ना आप कटवा दें फिर।
1: ना सर ये मैं मुझे मेरी माशाल्लाह 36 साल उम्र हो गई है, मुझे बहुत लोगों ने कहा लेकिन नहीं।
0: अच्छा आपको पसंद है?
1: हाँ मुझे पसंद है, मुझे मालिक की रज़ा में रहना खुशी महसूस होती
0: है। चलें फिर अच्छी बात है, अगर आपको पसंद है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर आपको पसंद नहीं है तो वैसे देखें नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की 5-10 उंगलियां होती हैं, तो 10 ही अगर आपकी काम कर रही है ना 10 ही रखिए फिर, अगर आपको पसंद ना तो फिर वैसे अच्छी बात है, फिर आप 25 ही रख लें, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने अपने पास रखनी है, संभाल के देनी नहीं है किसी को।
1: नहीं नहीं, मैंने किसी को भी ना देनी।
0: ओके भाई, ख्याल रखना अपना। उंगली जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही थी जी मेरी आवाज।

0: ओके जनाब, ये बात हम नहीं पूछ सकते, ये वाली बात भी हम नहीं पूछ सकते। और एक मैसेज है जी मेरे पास, और है आरजे सलमान की तरफ से, और सलमान कहते हैं जी कि बर्थडे जो है वो विश करनी है आयशा को और हुसनैन को, आयशा और हुसनैन दोनों को जो है वो सलमान की तरफ से हैप्पी बर्थडे। उनकी भाभी हैं, उनकी आज बर्थडे है जी, और जितने भी लोगों की बर्थडे है जी, सभी लोगों को जी हैप्पी बर्थडे, और सभी लोगों को रब करे कि ये साल उनके लिए खुशियों भरा हो, सलामती भरा हो जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
0: क्या हाल है क्यानी साहब, अब नहीं भूलूंगा मैं। क्यानी साहब आप आवाज बदल के भी आएंगे ना, फिर भी नहीं भूलूंगा।
1: नहीं नहीं आप भूले पहले भी नहीं थे, बस हमारे साथ आप जरा।
0: अच्छा तो क्यानी साहब सुनाए, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप खैरियत से?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ क्यानी साहब। आज मैंने बिल्कुल ही ना बड़ा ही एक अचंबा सा मौजू रखा है, आपको पसंद आया या नहीं आया, सच्ची बात बताइएगा।
1: देखिए ये वैसे बहुत जबरदस्त है और ये है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग फेस रीडिंग करके बिल्कुल पहचान लेते हैं दूसरे के दिल में क्या बात है या क्या करने वाला है या अब क्या करेगा, मतलब ये चेहरे से महसूस हो जाता है। ये जो पढ़ने वाले चेहरे हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
0: कारीगरी पढ़ने वालों की कारीगरी होनी चाहिए ना।
1: हाँ पढ़ने वालों की, लेकिन ये है कि मैं वैसे थोड़ा सा, मैं ये है कि थोड़ा सा मैं ये जानता हूँ कि जो कलर, जो मर्द जो है कलर पसंद करता है ना, उस जो लिबास का कलर यानी शलवार कमीज अगर पहनी है किस कलर की पहननी है, उस कलर से मुझे भी अंदाजा हो जाता है कि थोड़ा उसके मिजाज के बारे में।
0: अरे वाह, अच्छा अच्छा, ये पूरी साइंस है कैनी साहब। मैं इस पे 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि रंगों की जो सिलेक्शन है ना, वो आपको इंसानों के बारे में बताती है कि उसका मिजाज किस तरह से है,
1: मिजाज क्या,
0: ठीक है? अच्छा अच्छा, मुझे ना, अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे ब्लू कलर पसंद है, ठीक है? मतलब अपील करता है ना कोई एक कलर, आपको बहुत अपील करता है कोई भी चीज आप देखते हैं। आपने जूता लेना हो तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है जी, अच्छा ये वाला। आपने वो ड्रेस लेना है तो आपको सबसे ज्यादा वो वाला कलर पसंद आता है। तो मुझे जो डार्क ब्लू है ना, जिसको रॉयल ब्लू भी कहते हैं, आई थिंक सो रॉयल ब्लू कहते हैं, या जो डार्क ब्लू है जो ब्लैक के बड़े करीब करीब होता है, मुझे वो वाला कलर पसंद है। तो बताइए मेरे बारे में फिर।
1: ये जो है ना, जो जो इस कलर का लोग पसंद करते हैं, इस कलर को, वो जरा सख्त मिजाज होते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं, सख्त मिजाज लगते नहीं है मुझे।
0: मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ सख्त मिजाज, लेकिन मैं जब सख्त हो जाऊं तो बहुत सख्त होता है।
1: तल्ख यानी गुफ्तगु में भी और वैसे भी मिजाजन भी जो है ना, जरा वो सख्त गिर होते हैं यानी।
0: अच्छा सख्त, ब्लू कलर पसंद करने वाले लोग सख्त गिर होते हैं।
1: जी।
0: अच्छा मैं बहुत
1: तकरीबन जो है ना, जितने भी इन कलर में जो गाढ़े कलर है ना, जितने भी गाढ़े कलर, वो सख्त मिजाज लोग और जो है ना लड़ने झगड़ने वाले, इसमें कई किस्में हैं। लेकिन जो भी जो कलर है ना, धीमे कलर, जैसे हाफ व्हाइट हो गया, जैसे व्हाइट हो गया, ये लोग नरम मिजाज और मिलनसार किस्म के लोग होते हैं।
0: अच्छा अच्छा कैनी साहब, मेरा मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है और मैं अक्सर ब्लू चीजें बहुत पसंद करता हूँ। अभी भी मैंने ब्लू जीन्स पहनी हुई है और ब्लू कलर के जॉगर्स पहने हुए हैं।
1: और इसमें ये है कि ये लोग जो ब्लू जो है ना, ब्लू में बहुत खास बातें हैं। ब्लू में जो है ये भी बात है कि बड़ा वो जो है ना जहीन आदमी होगा।
0: अच्छा
1: ब्लू कलर पसंद करने वाला।
0: अच्छा
1: आप देखा होगा कि बहुत से लोग शर्ट जो है ना ब्लू शर्ट पहनते हैं
0: जी,
1: एक होती है हल्के धीमे रंग की, एक होती गड़े गड़े,
0: हाँ ब्लैक के करीब करीब वाला जो ब्लू होता है ना, मुझे वो पसंद है। ज्यादा ज्यादा डार्क ब्लू कलर मुझे पसंद है।
1: नहीं, आप पूछने के लिए आए हैं, मुझे बताने के लिए?
0: आपने कहा ना कि अब आपने कहा ना कि मुझे रंगों के बारे में पता है, तो मैं जरा चेक करना चाह रहा था कि क्या, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने उसको बनावटी नहीं किया, आपको जो आपका नॉलेज था आपने उसी को पोर्ट्रे किया। हाँ ये भी है, सख्त मिजाजी की जहां तक बात है तो मैं वैसे बहुत नरम दिल इंसान हूँ और मैं तो वो वाला बंदा हूँ जो मूवी देखते हुए रोने लग जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नरम मेरा वो है, तबीयत है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाए और जब मैं सख्त हो जाऊं तो फिर मैं बहुत सख्त हो जाता हूं। इतना सख्त हो जाता हूं कि टूटता नहीं। हाँ तो ये भी एक ट्रेट है। तो मैं
1: ये तो एक देखे ना, ये जीत दिया ना, हाय हाय, ये जो बात है जो आपने किया ना, ये भी बड़ी बेहतरीन मिजाज की होती है, मिजाज का लोग होते हैं तो इस मिजाज के लोग होते हैं वो बड़े मोहब्बत करने पे ली हुई। देखो ना, अगर एक सख्त गिर भी होता है बंदा, लेकिन उसमें मोहब्बत भी तो होती है ना, मोहब्बत भी तो होती है ना।
0: जी जी जी,
1: तो वो जब मोहब्बत में जाता है तो फिर बहुत दूर तक चला जाता है,
0: ऐसा ही
1: जब सख्त गिरी में जाता है तो बहुत सख्त हो जाता है।
0: हाँ, जो दोनों चीजें बड़ी एक्सट्रीम पे करनी है।
1: हाँ,
0: अरे हाय, थैंक यू क्यानी साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैंने तो आपका इम्तिहान ले लिया है ना।
1: चलिए चलिए जी, बहुत
0: शुक्रिया जी। अब ख्याल
1: तो बात करने का था जो
2: होगी आपसे। चले शुक्रिया क्यानी साहब, ख्याल रखिए।
0: ओके जी, इस वन ऑफ इंटरनेशनल के भी आपके साथ, और दिस इज द थर्ड कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, मुझे मेरी पर्सनैलिटी बता दे, मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। लाहौर से बारिश शहजादी
0: जी, मारिया शहजादी बताइए, एक ट्रेड बताइए अपना।
3: थोड़ी पे डिम्पल है।
0: थोड़ी पे डिम्पल है
3: जी।
0: और नहीं, डिम्पल डिम्पल नहीं होता ना, बनावट कैसी है थोड़ी की? देखिए, हम थोड़ी की बनावटें आपको बताता हूँ। एक होती है पॉइंटेड, नोकीली होती है, ठीक है, बड़ी नोक निकली होती है थोड़ी की। एक होती है बड़ी राउंड सी होती है, गोल बनी होती है। एक चकोर कलर की, चकोर होती है कलर, तो खैर कलर नहीं वैसे, चकोर उसकी ना शेप बनी होती है कि आपको जिस तरह स्क्वायर होता है ना, इस तरह से होती है। एक क्लिफ्ट होती है कि जिसके दरमियान में से दो ठोड़ियां निकली होती हैं, ठीक है। एक होती है, एक होती है अंदर की तरफ धंसी हुई ठोड़ी होती है। तो आपकी कौन सी वाली है? अच्छा, फेस लंबा है, चलो तो फेस पे बात कर लेते हैं फिर। अच्छा, फेस
3: बात कर रहे हैं, क्या मेरी कॉल के बाद बताइए।
0: नहीं नहीं, फेस फेस लंबा किस तरह से लंबा है, मुझे तो थोड़ा एक्सप्लेन करके जाए ना। एक होता है ओवल वाला लंबा, अंडे की तरह लंबा होता है।
3: नहीं, आम की तरह।
0: आम की तरह लंबा है, मतलब ऊपर से मोटा है और नीचे से थोड़ी से पतला है।
3: हाँ जी।
0: उसको बोलते हैं हार्ड फेस, ठीक है, उसको हार्ड फेस बोलते हैं। और नहीं नहीं, आपने कॉल के बाद नहीं बताऊंगा ना, फिर आपसे मैं पूछूंगा अभी कि क्या मैंने सही बताया कि नहीं बताया। मैं अगर आप मसरूफ हैं तो फिर आप अपना काम कीजिए, फिर हम किसी और कॉलर को ले लेते हैं।
3: नहीं,
0: मैं किसी और कॉलर को ले लेता हूँ फिर उनसे पूछना। आप इतनी मसरूफ हैं तो आपने आना ही नहीं था फिर।
3: नहीं नहीं, मैं असल में आपका प्रोग्राम भी सुन रही हूँ ना।
0: अच्छा,
3: तो साथ साथ में अपना काम भी कर।
0: तो मैंने मारी है, फिर आपसे रिजल्ट भी पूछना है ना, क्या मैंने ठीक बताया कि नहीं बताया, वो भी पूछना है ना फिर।
3: ओके ओके ओके।
0: हाँ, तो अभी आप फ्री हैं फिर आपसे पूछा जाए?
3: जी जी, पूछा।
0: जल्दी में तो नहीं है ना आप?
3: नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगी।
0: अच्छा, तो क्या काम कर रही थी आप?
3: बस मैं कोई मोती वगैरह निकाल रही थी।
0: क्या निकाल रही थी?
3: मोती वगैरह, मोती नहीं होते?
0: अच्छा, मोती निकाल रही थी, किस में से? सीप में से? सीप इकट्ठे
3: किए? बनाते हैं या कोई इस तरह का काम कर रही थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आप ये चाह रही थी कि आप साथ साथ मोती बुने और साथ साथ मैं आपके बारे में बताऊं, राइट? चले तो चले बता देते हैं, आप जो हैं वो तख्लीकी हैं, क्रिएटिव हैं, इंट्यूटिव हैं, किसी के बारे में आप राय कायम करती हैं फौरन से, ठीक है, इंट्यूशंस आपकी बड़ी स्ट्रांग है, इमेजिनेटिव हैं आप, ख्यालों ख्वाबों और एक एक अपनी दुनिया बनाती हैं अपने ख्यालों में ख्वाबों में, ठीक है, और उस दुनिया में जीने की कोशिश करती हैं, जज्बाती भी हैं और हसास भी हैं।
3: बहुत ज्यादा जज्बाती, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है।
0: कौन कौन सी बातें ठीक हैं और कौन सी सही नहीं है? आपको मैंने बताया तख्लीकी, आप क्रिएटिव हैं, किसी भी चीज को आपको क्रिएटिवली आपसे पूछा जाए या क्रिएटिव वो काम आपने करना हो तो वो जल्दी आप कर लेती हैं, आपको नई चीजें ईजाद करने की बड़ी आपके अंदर स्किल है, आप कर सकती हैं।
3: मैं भी बहुत ज्यादा, और जैसे कि आपने बोला कि नई चीजें याद करना, तो ये भी मेरे लिए बहुत इजी है। और बाकी अभी मुझे
0: एक और बात आपको मैंने बताई है कि आप इमेजिनेटरी हैं, मतलब कि आप इमेजिनेशंस बनाती हैं अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में एक ख्वाबी दुनिया बनाती हैं आप, और उस दुनिया में रह के आप अपने आप को खुशी महसूस करती हैं, आप
3: उसमें खुश रहती हैं। कोशिश करती हूं जी, ऐसा ही है।
0: ऐसा है, चलो थैंक यू सो मच मारी शहजादी, इसका मतलब क्या है? अल्लाह हाफिज। चले जी, पहली कॉलर को हमने बताया कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं और उन्होंने इस बात पे एग्रीड किया कि हाँ जी ऐसा ही है। सो जनाब, इल्म की बातें हो रही हैं आज, है ना, और मैं अपना इल्म भी टेस्ट कर रहा हूँ कि यार मुझे कितना पता वैसे। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, कौन है? हेलो जी, वालेकुम सलाम। ओके जी, ये बताने आई हैं आप? आवाज कट रही है मेरी बहन की।
4: मैंने ये कहना था कि मेरी बाएं आंख है ना,
0: हाँ,
4: पता नहीं दाएं है, नहीं दाएं है,
0: हाँ,
4: उसके ना 5 तिल है।
0: बाएं हाथ पे 5 तिल है?
4: हाँ जी।
0: अच्छा, मैं तिलों पे बात नहीं कर रहा ना, मैं बाएं हाथों पे बात कर रहा हूँ, मैं फेस चेहरे की बात कर रहा हूँ। चेहरा वो होता है जिससे आप खाना नहीं खाते, उसको चेहरा कहते हैं, जिसके ऊपर दो आंखें लगी होती हैं उसको चेहरा कहते हैं, जिसके ऊपर लंबी सी चिपटी सी या गोल सी नाक होती है उसको चेहरा कहते हैं।
4: अच्छा।
0: हाँ, फेस भी कहते हैं उसको अंग्रेजी में।
4: अच्छा।
0: हाँ, और ना किसी किसी जबान में बूथा भी कहते हैं। तो आज मैं बूथे पे बात कर रहा हूँ।
4: अच्छा।
0: तो हाँ, तो अगर हाथों पे बात नहीं कर रहा हूँ, तिलों पे बात नहीं कर रहा।
4: अच्छा।
0: हाँ जी जी,
4: तो मेरा फेस जो है ना वो गोल है।
0: गोल है आपका फेस?
4: हाँ, तो नाक इतनी लंबी नहीं है, छोटी सी है, गोल है।
0: चले,
4: अब बताएं।
0: अच्छा बताऊं, आपका गोल है फेस? कितना गोल है आपका फेस? देखें, गोल के भी ना दो होते हैं, एक अंडे की तरह गोल होता है और एक बिल्कुल आलू की तरह गोल होता है। आपका कैसा है?
4: आलू की तरह
0: गोल है। अच्छा, आलू की तरह जो गोल जिनका चेहरा होता है जी, वो होते हैं दूसरों के साथ मिलना जुलना उनको पसंद होता है, ठीक है, आसानी से आप दोस्त बना लेती हैं, नर्म मिजाज हैं, ठीक है, और गर्म जोश हैं, ठीक है, आपको दूसरों के साथ बातें जल्दी आसानी से कर लेती हैं, मिलना जुलना आपको अच्छा लगता है। आप किसी शादी में जाएं अगर ना, तो साथ में बैठे हुए जो खातून खाना खा रही है उससे दोस्ती जल्दी कर लेती हैं आप। कहीं किसी जगह हॉस्पिटल में गई हैं और वेटिंग सीट के ऊपर कोई बंदा बैठा है तो आप गप लगाना शुरू कर देती हैं। ऐसा है?
4: हाँ बिल्कुल है, ऐसा ही है।
0: हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मुंह मोड़ के उधर बैठ गई हैं और वो मुंह मोड़ के उधर, आप कोशिश करती हैं कि आप बात करें किसी से या एकदम दोस्ती बना लें, गपशप कर लें। चलो, वेरी गुड जी, खुर्रम, सेकंड वोट भी मिल गया आपको, थैंक यू। नौजी जनाब, बात कर रहे हैं आज हम चेहरों पे, और चेहरे आपके अंदर का इंसान कैसे बताते हैं, और कमाल नहीं हो गया?

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर, उसके बाद फिर एक गाना हमको सुनाते हैं, वापस आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कौन है? हेलो, ओके जी, कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी बात है कि आपने कॉल नहीं काटी। सॉरी यार, मुझसे ना मतलब होल्ड लग गया था।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: मलिक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी बाल से।
0: जी मलिक साहब, कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक।
0: मलिक साहब,
1: क्या कह दे यार, आज तो बहुत ही मजे का शो कर रहे हैं आप।
0: अच्छा,
1: क्या बात है यार।
0: आपके बाएं हाथ पे कितने तिल हैं?
1: नहीं, मेरे बाएं हाथ के तिल का नहीं, आप जो पूछ रहे हैं ना, मैंने उसका तजुर्बा किया है।
0: अच्छा, तो क्या पूछ रहा हूँ आज मैं?
1: वो फेस के बारे में, मतलब वो आपने उसके कई नाम लिए, लेकिन मैं आसानी से फेस ही कह देता हूँ।
0: मैंने इरफान, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, आज मैं बताने वाला हूँ, पूछने वाला नहीं।
1: हाँ, तो मैं वही ना, मैं मतलब आपके फेस आपको बताऊंगा कि मेरा चेहरा ऐसा है, तो मतलब दो तो आपने ठीक किए, लेकिन देखते हैं कि तीसरा कैसा होता है।
0: चलो, अगर तीसरा ठीक हो गया तो फिर क्या होगा?
1: फिर क्या होगा? फिर मैं आपको जूते माफ कर दूंगा।
0: जूते माफ कर दोगे? यस, आपको तो मैंने जूते भेजने हैं ना। आपको मैंने जूते भेजने हैं।
1: हाँ, भेजने हैं ना।
0: हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया था वैसे। चलो,
1: कब भेजोगे आप मेरे? वो क्या कहते हैं, पाँव में सर्दी लगती है, बीमार बंदा हूँ।
0: पाँव में सर्दी लगती है
1: जी,
0: तो पाँव आपके फ्रिज में रखवा देते हैं।
1: चले, जैसे आप करेंगे। खुरम भाई, आप ना मुझे जहाँ छोड़ेंगे, मैं जाने के लिए फिलहाल तैयार हूँ, क्योंकि मुझे जूते चाहिए।
0: चलो ठीक है, आपको फिर जूते भिजवाते हैं। बताओ क्या पूछना है?
1: मैंने अपने चेहरे के बारे में बताता हूँ।
0: एक चीज बताओ, छोड़ो चेहरा ना, बताओ
1: मतलब
0: सुनो ना, सुनो
1: था।
0: सुनो, चेहरा को, चेहरे को छोड़ो
1: जी।
0: आप मुझे अपनी ना भवें बताओ, आईब्रोज, आईब्रोज किस तरह के हैं? लंबे हैं, गोल सी टाइप हैं, या बिल्कुल राउंडेड हैं, उठे हुए हैं, या साइडों से ऐसे तीरों की तरह हैं, या मोटे हैं, किस तरह से हैं?
1: वो तो मेरी है ही नहीं,
0: आईब्रोज है ही नहीं है।
1: आईज नहीं ना, आईज नहीं है ना।
0: नहीं, आई ब्रोज की बात कर रहा हूँ मैं, आंखों के ऊपर जो आपका होता है, जैसे हम परमटे बोलते हैं यार।
1: जी जी जी।
0: हाँ, परमटे ना पूछना पे।
1: अच्छा अच्छा, समझ आ गई है ना। हाँ, वो आईज से मैं कंफ्यूज हो गया था।
0: हाँ बताओ,
1: मतलब वो कैसे हैं?
0: हाँ, वो कैसे हैं?
1: वो मतलब ना ऊपर से ब्रीक हैं, तो मतलब वो क्या कहते हैं, जिस तरह चढ़ाई होती है ना, इस तरह से लंबे है।
0: अच्छा,
1: ऊपर से बिल्कुल स्मार्ट स्मार्ट है।
0: लंबे हैं ये? सीधे हैं या इनके ऊपर कर्व्स हैं? बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे हैं?
1: नहीं नहीं, थोड़ी सी ना, थोड़ी सी मतलब है, वो क्या कहते हैं, कर्व,
0: थोड़ा सा कर्व, हल्का कर्व है, ज्यादा नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: तो फिर भाईजान, आप, आपका जो ट्रेट है ना, वो सेम वही वाला ट्रेट है जो अभी मैंने आपके जाने से पहले ना, अभी जो लास्ट कॉलर थी, कौन को कॉलर, फीमेल खातून थी ना, जिन्होंने अभी
1: मुझे चेहरा, आरिया से के बाद जिसकी कॉल लगी।
0: हाँ हाँ, जिन्होंने बताया था कि उनका चेहरा जो है वो राउंड है।
1: हाँ।
0: सो आपके सेम ट्रेट्स हैं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो मतलब आप,
0: आप
1: बता देना थोड़ा सा।
0: अच्छा बता,
1: क्योंकि वो तो मुझे अब याद नहीं, तो सुन में जो होगा मैं मान।
0: अच्छा सुन लो, कि आप नरम मिजाज हैं, ठीक है, आपका दिल बहुत नरम है, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी अगर आप के साथ किसी के साथ कुछ ज्यादती हो रही हो या कुछ हो रहा हो, तो आप उसको बहुत ज्यादा दिल पे लेते हैं, ठीक है।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: एक
1: बिल्कुल।
0: दूसरा, आप भी दोस्ती फटाफट बना लेते हैं, मिलनसार हैं, जिस तरह मैंने कहा ना कि आप, वो खवातीन बैठी होती हैं किसी जगह पे, आपके पास भी एक को बंदा बैठे तो आप चुप करके नहीं बैठते, आप उससे बात करना शुरू कर देते हैं।
1: बाकी सब बातें ठीक निकली, लेकिन ये जो बात है ना, अगर मुझे कोई पहले छेड़े नहीं ना, तो मैं उससे नहीं बुलाता।
0: अच्छा, मतलब आप पहल नहीं करते।
1: हाँ बिल्कुल। बाकी जो आपने बताया ना, मतलब नरम मिजाजी और दोस्ती करना,
0: हाँ,
1: ये बाकी सब ठीक है, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा जो है ना,
0: आप पहल नहीं करते,
1: लेकिन बाकी आपने सब ठीक बताया।
0: मतलब आप पहल नहीं करते किसी के साथ बात करने में, कोई और
1: हाँ,
0: पहल करे,
1: कोई बुला ले ना, मतलब फिर मैं नखरा भी नहीं करता, मैं कहता हूँ यार उसका भी टाइम अच्छा गुजर जाएगा और मेरा भी।
0: अच्छा, ये जो बात है ना, ये आपकी पर्सनालिटी में किसी और वजह से है। वैसे आप जो जनरली है ना, वो ऐसे ही है कि आप एकदम दूसरे से बात करना चाहते हैं।
1: मैं बिल्कुल, लेकिन मुझ में थोड़ी ना वो क्या कहते हैं, शर्मीली पाई जाती है कि यार वो क्या सोचेगा, लेकिन अगर सामने वाला पैर कर दे तो फिर मैं बस भी नहीं करता।
0: उसकी दो, उसकी एक दो रीजन है।
1: मुस्कुराते रहे करम भाई, यार आप तो बहुत काम की चीजें लाने लगे हैं। प्रोम से भी यार कभी बात करवाना ना, उस दिन बहुत मजा आया था।
0: उससे आपकी बात करवाऊं?
1: हाँ
0: चलें, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी बात करवाऊंगा
1: उससे। हम ना मैं गुनगुनाऊंगा, लेकिन आपने उससे पूछना है कि कैसा गुनगुनाया।
0: चलो डन डन डन डन। वो किससे बात करानी है आपकी? किससे बात करानी है?
1: वो जो ऐप है आपके पास है।
0: नहीं, क्या नाम है उसका?
1: यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ब्रो।
0: ओके मेरी जान, ख्याल रखो अपना, बाय बाय। ओके जी, गाना सुनाने लगा हूँ आपको मैं, और गाना है ये वाला।

0: वो कहता है कि यूं ना समझो कि वो गिला नहीं बाकी, दिल शिकस्ता में अभी जान है बाकी। यूं ना समझो कि वो गिला नहीं बाकी, दिल शिकस्ता में अभी जान है बाकी। लब सिले हैं तो ये रजा नहीं मेरी, निगाहों में भी एक जहां है बाकी। कम जो जबां तक ना आ सका वो दिल में है, जबां तक ना आ सका वो दिल में है, आंख से नुमाया सारा बयां है बाकी।
1: एक दिल है दिल में जो
0: फक्त हर्फ नहीं ये सदा है दिल की, जो लबों तक ना आई वही बात है बाकी।
1: दुनिया के सीखे प्यार,
0: इतनी शिकायतों से भर गया है ये दिल, इतनी शिकायतों से भर गया है दिल कि मेरे पैकर में सब्र का निशान है बाकी। हर एक हर्फ में दिल की बात ढली है अभी, जो शेर में कही वही तो दास्तां है बाकी।

0: मैं हाथ लगा रहा हूँ।
1: हाँ बिल्कुल चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए।
0: खुरम भाई ये छोटे भी हैं और गोल भी हैं।
1: ओके, छोटे हैं और गोल हैं।
0: जी हाँ
1: ठीक है। तो
0: और ये जो मेरे कान है ना, ये बिल्कुल ऐसे, मतलब ना कुछ लोगों के होते हैं ना ऐसे आगे की तरह होते हैं, मेरे बिल्कुल ना हेड के साथ अटैच, मतलब कह सकते हैं।
1: अच्छा नहीं, मैं कान के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कान का जो हिस्सा है एयर लॉब उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो नरम वाला हिस्सा है। उसमें आपने मुझे बताया कि वो छोटा है और गोल है, राइट?
0: बिल्कुल ऐसा ही है।
1: तो आप मेरे भाई नफीस इंसान है, नफीस से मुराद कि आपको सफाई पसंद है और आप हर चीज को अपनी जगह पे रखना पसंद करते हैं। लाइक कि अगर आपकी कोई चीज जहां पे आप रखते हैं ना, स्पेसिफिक आपने एरिया बना रखा है, लाइक आप जिस कील के साथ अपनी गाड़ी या बाइक की चाबी लगाते हैं, आप चाहते हैं कि वहीं लगी रहे। आपने अगर ग्लास में पानी पीना है तो कभी बोतल से पानी नहीं पियेंगे, आप ग्लास में पानी डाल के पियेंगे, ऐसा है?
0: बिल्कुल आप तो छा गए मेरी जान।
1: अरे वाह, अरे वाह, तालियां बजाओ ना फिर मेरे लिए। थैंक यू।
0: मैं आपको इन चीजों के बारे में ना, कुछ ऐसी चीजें मेरे घर वालों को भी नहीं पता, तो आपने
1: बस देख लो, मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ। अगर मेरे सामने आ गए ना, मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ, मेरे सामने आ गए ना तो 5 मिनट में सारा चट्टा कट्ठा मालूम कर लूंगा और भी बहुत सारी बातें मालूम कर सकता
0: हूँ। आप बिल्कुल मेरी तरह बहुत नाइस इंसान है, आप फनी इंसान है, मैं खुद फनी हूँ, लेकिन मैं आपको सुनता हूँ मुझे और मजा आता है।
1: अच्छा नहीं, मैं फनी नहीं हूँ, मैंने अपनी नाक के ऊपर जो टीका था वो हटा दिया।
0: नहीं नहीं नहीं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं।
1: अच्छा।
0: तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और सुनने वालों के लिए एक पैगाम दिया मेरा।
1: ओके।
0: कुछ लोग होते हैं आजकल के जो यूथ है, देखे मोबाइलों में गुस्से या दूसरा तीसरा वालदैन की बात,
1: दूसरा तीसरा दूसरा
0: आपका टाइम ले रहा हूँ,
1: रुको ना पहले, दूसरा तीसरा बताओ, ये दूसरा तीसरा क्या होता है? दूसरा तो मैंने क्रिकेट में सुना होता है, तीसरा क्या होता
0: है? देखे ना, मैं मेरे कहने का मकसद ये है कि जितनी यूथ है आजकल के जो यंगस्टर हैं, इनको चाहिए ये सोशल मीडिया से अगर नेट से वापस चलाते हैं तो इनको चाहिए आधा घंटा एक घंटा रेडियो को भी ट्यूनिंग करें, ताकि इनके अंदर थोड़ी अकड़ शौर भी आए।
1: चलो बचत हो गई आपकी, चलो थैंक यू भाई।

0: क्योंकि जनाब मेरे साथ आरजे सलमान हैं जी। आरजे सलमान हमारे पेटी बंद भाई हुआ करते थे यहाँ पे, आजकल प्रोग्राम नहीं कर रहे, लेकिन आरजे सलमान आपको बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं भाई।
1: गम ने मारा,
0: आए हाय गम लगा गए सलमान आप हमें। और सलमान ने भी मुझे मैसेज किया है और सलमान कह रहे हैं कि जी मैं लाहौर से, लाहौर में हूँ आजकल, और लाहौर में शबे रोज जो है वो मेरे गुजर रहे हैं, और कह रहे हैं जी कि मेरी भाभी हैं आयशा हुसनैन, आयशा हसनैन, तो उनकी आज बर्थडे है, तो उनको जब मैं हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ, और मेरी बहुत ख़ास भाभी हैं और मेरी बड़ी मोहब्बत है उनसे। सो जब भी उनकी बर्थडे हुआ करती थी तो मैं रेडियो पे उनको विश किया करता था। सो आज मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा ड्यू टू सम रीजंस, और मैं रेडियो पे नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको बर्थडे विश करना चाहता हूँ और मैं वो रवायत कायम रखना चाहता हूँ। तो सलमान क्यों यार, हम आपके भाई हैं ना, हमारी भी भाभी हैं, हम विश करते हैं भाई हैप्पी बर्थडे भाभी, भाभी हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। इस साल जिंदगी में आप वो कुछ हासिल करें जिसकी आपने तमन्ना की है, और वो कुछ भी आपको मिले जिसकी, जिसके लिए अल्लाह ने आपके लिए प्लान कर रखा है।

आज तो खुश होते हैं, वो ये कहानी फिर से ही कि किसके गम ने मारा हमें, इस पे भी बात करेंगे कि ये कहानी फिर से ही कि हमको किसके गम ने मारा। अभी मैं ऑफ द एयर कुछ कॉल्स ले रहा था तो उसमें कॉल आई, मैंने कहा जी कि आप इस मौजूद

0: पे बात कीजिए, और लास्ट प्रोग्राम में भी उन्होंने मुझे कहा था कि इस मौजू पे बात कीजिए। सो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इस मौजू पे ज़रूर बात करूँगा, और ये मौजू बहुत ख़ास है कि जिसके ऊपर बात की जाए, लेकिन वो ज़रा गमजदा सा मौजू है, उसको हम एक प्रोग्राम पूरा रखेंगे। कभी किसी प्रोग्राम में रोना भी चाहिए ना, हमेशा हंसना नहीं चाहिए, कभी रोना भी चाहिए। सो अगले प्रोग्राम में रोने वाला मौजू रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत क्या हाल चाल है रिजवान भाई, तबीयत ठीक है आपकी?
0: जी बिल्कुल जी, रिजवान भाई बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है जी?
1: जी अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ, लाहौर चुगुसी से।
0: अच्छा जी अब्दुल रऊफ साहब, बताइए जी, रिजवान सुन रहा है आपको।
1: हेलो
0: जी, जी अब्दुल रऊफ साहब रिजवान सुन रहा है आपको, बताइए बोलिए।
1: बस नहीं, आपका नाम, ये नाम नहीं याद आ रहा। तो बस सुन रहा था,
0: बस आप मुझे रिजवान कह दिया करें, ठीक है? मैं आपका रिजवान हूँ।
1: अच्छा चलिए ठीक,
0: ठीक है, आपका रिजवान
1: ठीक है सर, माजरत के साथ ठीक है,
0: सिर्फ आपका रिजवान ठीक है
1: जी सर। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, माजरत के साथ।
0: नहीं अब्दुल रऊफ भाई क्यों माजरत कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपका रिजवान, ये वाला टाइटल आपने दिया ना मुझे रिजवान वाला,
1: मुझे बस लगा कि यही आपका नाम।
0: हाँ बस चले, आपने रिजवान कह दिया, आइंदे से मेरा नाम रिजवान है, ठीक है जी, सिर्फ आपके लिए
1: ठीक है। वैसे हाँ। क्या नाम है आपका?
0: वैसे क्या नाम है मेरा?
1: जी
0: वैसे मुझे कुछ भी कह देते हैं, ए जी, ओ जी, सुनो जी, ये भी कह देते हैं।
1: अच्छा उन्हें वो तो आपके भाभी का
0: है? हाँ? नहीं कोई भी कह देता है, रास्ते से गुजरते लोग भी कहते हैं ओए सुनो ए, ऐसे भी कह देते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे रिजवान कहा तो मेरी रजामंदी है, ठीक है, मेरी खुशनूदी है, कबूलियत है। जैसे रिजवान का मतलब होता है कि रजामंदी, खुशनूदी, कबूलियत, तो बस आपने मुझे कह दिया तो मैं रिजवान हूँ।
1: ठीक है
0: ठीक है चले अब्दुल रऊफ साहब माजरत चाहता हूँ, कहिए क्या कहने आए।
1: मैंने आपके प्रोग्राम में दूसरी दफा कॉल की है।
0: जी जी जी,
1: मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं लेडीज शूज का मेरा काम है।
0: अच्छा लेडीज शूज का काम है, वाह वाह, जो टिका टिका के पड़ते हैं कभी कभार।
1: कभी कभार
0: कभी आपको रिजवान साहब, कभी आपको वापस करके किसी खातून ने ऐसे जूता फेंका हो कि अब्दुल रऊफ साहब ये वाला जूता नहीं कहा था मैंने आपको, कभी फेंका किसी ने ऐसे?
1: होलसेल का काम है सर।
0: अच्छा होलसेल का, आप मर्दों को ही जूते देते हैं? भर भर भर भर के जूते देते हैं मर्दों को आप, है
1: जी ऐसी है।
0: चले चले बिल्कुल ठीक है, तो बताइए अब्दुल रऊफ साहब क्या बात करना है।
1: अच्छा मैंने अपने फेस के बारे में मैंने आपसे सवाल करना था।
0: जी जी,
1: कि मेरा फेस थोड़ा सा गोल भी है और थोड़ा सा लंबा भी है।
0: थोड़ा सा गोल भी है और थोड़ा सा लंबा भी है, अच्छा ठीक है। तो अब थोड़ा सा गोल और थोड़ा सा लंबा नहीं हो सकता आपका, आपका चेहरा, आपका चेहरा ऐसा हो सकता है कि हाँ यस हो भी सकता है, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि ओवल शेप में अंडे की मानद है, जिस तरह अंडा होता है, मतलब मैं सिर्फ आपको मुशाबत देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि आपका बिल्कुल अंडे जैसा मुंह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अंडे की तरह है, जिस तरह अंडा गोल होता है, या बेजवी, जिसको बेजवी बोलते हैं, बेजवी है।
1: हाँ जी,
0: एक दफा फिर सोच लेंगे, बेजवी है, क्योंकि अगर आप गलत ट्रेड बताएंगे ना तो मैं आपका ट्रेड गलत बता दूंगा।
1: नहीं नहीं, मेरा थोड़ा सा गोल इसलिए है कि हेल्दी है थोड़ा सा, और लंबा वो आपको पता है लंबा जो सा एक
0: नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि आपके आपका चेहरे की जो बनावट है वो बेजवी है, बेजवी समझते हैं?
1: हाँ जी बेजली,
0: हाँ बेजवी, जिस तरह अंडा होता है उस तरह से है।
1: हाँ जी अंडा की तरह ही है।
0: ओके चले, तो मैं बताता हूँ आपके बारे में, आप थोड़े डिप्लोमेटिक हैं, मतलब आप हर चीज को डिप्लोमेटिकली हल करना चाहते हैं, मुतवाजन अडेप्टेबिलिटी, मतलब कि ऐसे कि आप के सामने कोई चीज, अगर अगर कोई बंदा आपको बुरा भी लगता हो ना तो आप उसको नहीं बताते मुंह के ऊपर कि यार तुम बुरे हो, आप उसके साथ फिर भी हंस के बात करते हैं, कहते हैं यार तू मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये है वो है, मतलब आप उसका दिल खफा नहीं करते, रंजीदा नहीं करते उसको, या आप उससे आप ये भी सोच रहे होते हैं यार इससे मेरा काम पड़ेगा, मतलब आप कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ है, उसको आप पोलिटिकली हल करना चाहते हैं, जैसे सियासतदान नहीं होते वैसे आप। आप कोई ऐसा है या नहीं है, मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ कि आपका चेहरा ये कहता है कि आप ऐसे हैं,
1: सही कह रहे हैं।
0: ये बात अलग है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर हम बहस नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि आप ऐसे हैं या नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, हर माहौल में ढल जाते हैं आप, कोई भी माहौल हो ना अगर कोई मतलब कि कोई फ्रेंडली माहौल है तो आप फ्रेंडली माहौल में ढल जाते हैं, अगर कोई आपके साथ दोस्ती करता है तो आप दोस्ती कर लेते हैं, अगर कोई आपको आपसे मुंह नहीं लगाता आपको तो आपको भी उसको आप उसको मुंह नहीं लगाते, अगर कोई बड़ों में बैठे हैं तो आप बड़े बन जाते हैं, छोटों में बैठे हैं तो छोटे बन जाते हैं, ऐसा है?
1: बिल्कुल 100% है।
0: ओके, और पहले वाली बात भी मैंने ठीक की कि आप सियासतदान हैं, सियासत से चलते हैं चीजों को। बेगम को अपनी जगह पे कहते होंगे कि बेगम यार छोड़ ना, अम्मी की ऐसी आदतें हैं ना, क्या करूं यार, ये भाई मेरा है ही ऐसा, बाहर जाके भाई को कहते हैं यार बेगम ना बस क्या करूं फंस गया हूं।
1: मेरा भाई है कोई ना,
0: मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। चलें ओके अब्दुल रऊफ साहब, ख्याल रखें, मतलब अभी तक मैं गलत साबित नहीं हुआ यार, वेरी नाइस खुर्रम।

ओके जनाब, वो कहता है कि तेरे चेहरे पे जो निखार है, ये किसकी खामोशी की चाहत का प्यार है। तेरे चेहरे पे जो निखार है, ये किसकी खामोशी का प्यार है। लोग सुनते हैं बस अल्फाज की झनकार यहाँ, लोग सुनते हैं बस अल्फाज की झनकार यहाँ, कौन जाने के दिल में कितना गुबार है। हमने तो फूल मांगे थे जिंदगी से, मगर हाथ में रह गया जो वो सिर्फ खार है। फूल खिलते हैं तो लगता है कोई आया है, खुशबू आती है तो लगता है कि तुम आए हो। फूल खिलते हैं तो लगता है कोई आया है, खुशबू आती है तो लगता है कि तुम आए हो। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ छू लें तो चमन याद चला आता है। चांदनी रात में जब फूल महकते होंगे, तुम भी ख्वाबों की किसी वादी में रहते होगे। चांदनी रात में जब फूल महकते होंगे, तुम भी ख्वाबों की किसी वादी में रहते होगे। हमने तन्हाई में चेहरे को सजाया है बहुत, आईना देखा तो खुद से ही शर्मा गए हम। कौन रखता है याद नामों को, कौन रखता है याद नामों को, लोग अक्सर चेहरों को भूल जाते हैं। चेहरों पे बात कर रहे हैं आज हम, कि चेहरे कैसे होते हैं और चेहरे किस तरह से दिखाते हैं कि हम कैसे हैं, और चेहरों की बनावट और चेहरों के खदो खाल आपके अंदर के इंसान के होने का पता देते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह से हैं आप, कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी नहीं हैं, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं आपके, बताते हैं आपके चेहरों के खदो खाल। 0511100101 और 920-2540 पे आपसे मैं पूछ रहा हूँ। और अभी तक जितने कॉलर्स ने कॉल की और जितने लोगों ने अपने बारे में बताया और जितनों की मैंने प्रेडिक्शंस की हैं, वो सारी अभी तक दुरुस्त साबित हुई हैं अकॉर्डिंग टू द कॉलर्स। और आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। लेकिन खैर, मेरे साथ कुछ फेसबुक पे भी दोस्त मौजूद हैं, तो मैं फेसबुक के लोगों को ज़रा ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। यार आजकल क्यों देता हूँ मैं ज़्यादा तवज्जो, इसलिए कि मैं आज फेस पे बात कर रहा हूँ ना, आज ज़रा ज़्यादा ही मैं फेसबुक वालों को तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मौजू आज फेस है ना। खदीजा है मेरे साथ वजीराबाद से, कहती हैं जी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्रो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी और ने भी मुझे कहा है जी अस्सलाम वालेकुम खुरम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम जी। अरूज मुझे कहती हैं कि अगर मैं फेसबुक पे बताऊं कि मेरा फेस कैसा है तो बताएंगे कि या नहीं बताएंगे, तो बिल्कुल बताऊंगा अरूज, मुझे लिख के भेज दीजिए। आपको एक भी ट्रेट अपने फेस का तो मैं बताऊंगा जरूर।

यार वैसे गाने भी मजेदार मिल रहे हैं ना आज, जबरदस्त गाने, आज गाने भी मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं आज। मेरी चुन्नी दी है रेशमी तन्ना, अरे वाह वाह वाह। चुन्नी कहते हैं दुपट्टे को, तन्ने कहते हैं जो धागे होते हैं उनको कहते हैं तन्ने।

कहता है जी मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा तेन वेख के लंघ दिया संगा तेरे नांदी में मंगा तेरे नांदी में मंगनी है मंगा तेरे बाजू में किधर किधरों ना लंगा। अरे वाह वाह।

0: अच्छा जी, मुझे किसी ने लिखा है कि जी आप पंजाबी में बात करें, कि पंजाबी मेरी इतनी चंगी नहीं है, मेरी इतनी पंजाबी चंगी हैगी नहीं है, मैंने पंजाबी आंदी नहीं है, मैं पंजाबी बोलांगा ते टंगा पनांगा। लेकिन आई लव टू स्पीक इन पंजाबी, लेकिन मुझे पंजाबी आती नहीं है, इतनी अच्छी नहीं आती। ओके जी, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहां से हैं? अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
1: सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, क्या हाल है सर, कैसे हैं
1: आप? ठीक है सर, अमीर गुल अर्ज करूंगा
0: जी, जी जी अमीर गुल साहब, पहचान लिया आपको मैं, बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, फिट हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे म्यूजिक किस चीज का है?
0: पीछे म्यूजिक किस चीज का? पीछे तो कोई म्यूजिक नहीं आज,
1: मैं कोई ऐसा पर लग रहा है जैसे कोई कुरान पढ़ा जा रहा है।
0: अच्छा,
1: आवाज आ
0: रहा। अच्छा, तो फिर आपको फरिश्ते सुना रहे होंगे?
1: मुझे, मैं वाकई आपसे सही बात कह रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन बंद है सारी।
0: अच्छा, नहीं यहाँ से तो नहीं कुछ भी चल रहा।
1: अच्छा चलो, आज मैं, अच्छा आज आप चेहरा शनासी पे बात कर रहे
0: हैं? हाँ जी, चेहरा शनासी पे। और आपने आज अमीर गुल साहब चेहरा शनासी पे मुझे शेर सुनाना है।
1: अच्छा।
0: एक
1: उस्ताद का शेर है
0: जी,
1: कि मुख्तसर सी उड़ान वाले हैं हम, कहाँ आसमान वाले हैं।
0: मुख्तसर सी उड़ान वाले हैं हम, कहाँ आसमान वाले हैं।
1: तो शेर आप सुन लीजिएगा, चेहरे कि मुझको बेचेहरा मत समझ लेना, मुझको बेचेहरा मत समझ लेना, नाक मुंह कान वाले हैं,
0: नाक मुंह कान वाले हैं। ओके वाओ।
1: अब आप बताएं, आप चेहरा शनास हैं, मैं तो हवा शनास हूँ।
0: आप हवा शनास हैं? ओके,
1: मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था।
0: जी जी जी।
1: अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा चेहरा लंबा कितना है, ये कितना गोल है।
0: अच्छा
1: है?
0: अच्छा, तो फिर ये आपको नहीं पता तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ?
1: आप अंदाजा लगाएं।
0: अंदाजा लगाऊं? अच्छा अमित गुल साहब, मेरे पास एंची टेप नहीं है आज। आज मेरे पास एंची टेप नहीं है, मैं घर भूल आया, वरना मैं नाप लेता।
1: बात ये है
0: जी
1: कि चेहरा शनासी जो है वो मेरा नहीं ख्याल के पहली नजर में किसी को पहचाना जा सकता है। ये मेरा अपना जाती अंदाजा है
0: जी,
1: क्योंकि किसी जज ने कहा था
0: जी,
1: मेरे सामने कातिल, एक लड़का कातिल पेश हुआ, तो मुझे उसके चेहरे में बड़ी मासूमियत नजर आई।
0: सही।
1: और उसे मैंने लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर रिहा कर दिया, लेकिन बाद में पता लगा उसने बड़े कत्ल किए। फिर मैं हाई कोर्ट का जज था उसकी, मेरे पास अपील लगी, कहते मैंने बड़ा गलत फैसला किया था।
0: हाँ बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इतफाक करता हूँ अमित गुल साहब, इस बात से इतफाक करता हूँ कि सभी के चेहरों की मैंने पहले शुरू में जब जो तमीद बांधी थी ना, शायद आपने वो नहीं सुनी।
1: मैंने नहीं सुनी।
0: हाँ बस फिर इस बात से ना, फिर क्योंकि मैंने कहा था कि ये सुनना बड़ा जरूरी है, तब आपने अगर आधी बात पकड़ेंगे तो फिर आपको इससे ना
1: मैंने
0: शुरू में मैंने कह दिया था जी, मैंने शुरू में कह दिया था कि इसके में 100% ऐसी सदाकत नहीं है, कुछ 30-40% ऐसा होता है, और बाज़ोकात ऐसा होता है कि आप टोटली अपने रिजल्ट से अपोजिट चले जाते हैं। बहुत सारी पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि जो आपको चेहरों से कुछ और दिखती हैं और होती कुछ और है।
1: होती कुछ और है
0: जी।
1: असल में हर आदमी के अंदर एक ड्यूअल पर्सनालिटी पाई जाती है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: ये है
0: जी बिल्कुल,
1: आज का सच है, जिसे हम मानने से चाहे इनकार करें या माने या ना माने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: जी जी, जरूरी है ना हमीद गुल साहब, जरूरी भी हो जाता है
1: वो ये जो है ना, हमारे उस्ताद कभी कभी कभी कहा करते थे कि हमीद गुल थोड़ी मुनाफ़त सीख लो। मैंने कहा ये नहीं होगी सर मुझसे, मैंने ये इस माशरे में बड़ी जरूरी होगी।
0: मुनाफ़त नहीं होनी चाहिए
1: लेकिन हमसे
0: इसको
1: हम तो कह देते हैं सामने चेहरे पे।
0: अच्छा,
1: मैं तो कह देता हूँ
0: अमित गुल साहब, इसको मुनाफ़त नहीं कहते, इसको कहते हैं कि इसके लिए बड़ा जबरदस्त एक वर्ड यूज किया जाता है, अभी मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन इसके लिए बड़ा एक जबरदस्त वर्ड यूज किया जाता है कि जिसको हम कहते हैं यार क्या बोलती हैं उसको, मिस कर गया, जब मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर।
1: चलो मैं आपको अपनी तस्वीर भेजते हैं।
0: अच्छा
1: चले अंदाजा,
0: चले
1: देखते हैं आपका अंदाजा क्या होता है।
0: अभी अभी तो नहीं देख सकता क्योंकि अभी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं फुर्सत से देखूंगा तो फिर आपको बताऊंगा। ठीक है
1: चले चले,
0: ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी कॉलर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? हेलो, अरे वाह, तीसरी दफा मैं आपकी कॉल पिक कर रहा हूँ, तीसरी दफा आपकी कॉल नहीं लग रही, कनेक्ट नहीं हो रही। चलो जी नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब
2: जी, लाहौर से इरम बात कर रही
0: हूँ। जी इरम कहिए।
2: और भाई मुझे पूछना ये है कि दांतों के बीच जो छेद होते हैं उसकी क्या नाम?
0: दांतों के छेद?
2: हाँ जी,
0: दांतों के छेद आप तुड़वा के बड़े कर सकती हैं।
2: फिर वही बात यही पूछ रहा था कि उस दांत के बीच में जो सुराख होते
0: हैं। हाँ
2: हाँ वो
0: नहीं, आप दांतों के जो छेद है ना वो बड़े करा सकती हैं तुड़वा के, वैसे
2: सही है।
0: हाँ, और उनको कम भी करा सकती हैं, वैसे आजकल बड़ी फीलिंग्स आ गई हैं।
2: सही हो गया।
0: हाँ, इसके अलावा कुछ पूछना चाहे तो?
2: नहीं भैया बस यही पूछना था, और बाकी जो चेहरे के बारे में वो तो हमने सुन लिया, और हमारी आपी ने जो चेहरे के बारे में बताया था बिल्कुल सेम ही है वैसे।
0: कौन सी आपी ने?
2: हमारी आशा दादी ने।
0: अच्छा अच्छा चले ठीक है जी,
2: सलामत रहे सब सुनने वालों को। अस्सलाम
0: वालेकुम,
2: और वो भी चले मैं
0: अभी देता हूँ आपको जवाब। ठीक है
2: ठीक है,
0: अभी देता हूँ जवाब। ओके।

0: रॉकी जी इरम आई थी मेरे से लाहौर से, और इरम ने कहा था जी कि दांतों के दरमियान जो गैप होता है उस गैप से हम क्या ट्रेट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो जो दांतों का गैप होता है जी, उसके बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारी बातें उसके बारे में की जाती हैं। लेकिन अगर चेहरा शनासी में अगर कहा जाए कि जो दांतों का गैप होता है अगर वो ज़्यादा हो, तो उसमें उसको ये कहा जाता है कि वो लोग जो होते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं, दौलत बहुत होती है उनके पास, या दौलत से मुराद सिर्फ पैसा नहीं होता, दौलत से मुराद उनके माँ बाप उनके साथ हयात होते हैं, उनके बहन भाई होते हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके दोस्त उनके इर्द गिर्द बहुत होते हैं जो उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके बच्चे उनके फरमा बरदार होते हैं, और इस तरह की बातें ये मिथ्स हैं कि कही जाती हैं। वो खुश अखलाक भी होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, लेकिन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनको चीज़ें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत जल्दी वो बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। सो जनाब ऐसा होता है इरम। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट वालर हैं।
1: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब, क्या हाल है?
1: अल्लाह का करम है खुर्रम भाई, क्या हाल है यार? आज तो आपका प्रोग्राम ही डेढ़ घंटा उसका मिस हो गया। बहुत
0: डेढ़ घंटा क्या हुआ?
1: डेढ़ घंटा हो गया तो यहाँ से चैनल बंद है अपना हैदराबाद का।
0: अच्छा,
1: और दूसरी बात ये है कि आपको कॉल मिला रहा हूँ, तीन काले मेरे लगी उस नंबर पे जब मैं कॉल कर रहा था ना 40 वाले पे, उससे असल में कॉल आपने तीन मरतबा, आपका कसूर नहीं है, आपने तीन बार कॉल उठाई मेरी, लेकिन ये कि एक बार आपकी आवाज आई, दो मरतबा मेरी आवाज आपके पास नहीं आ रही थी। अच्छा। आपने जो है ना ये दूसरे नंबर पे आ गया मैं।
0: अच्छा चले, अब आपकी कॉल लग गई है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: तो मैंने कहा मेरी मार्केट में आऊँ, हाजिरी दू, उसके बाद फिर लिंक पे चला जाऊँ, वहाँ से आपका बकाया प्रोग्राम सुनूं।
0: चले, आपकी हाजिरी लग गई है, अब फटाफट पहुँचे वहाँ पे।
1: हाँ, अभी ये बात ये है कि आपने मेरे ख्याल मौजू रखा है चेहरे का।
0: हाँ जी हाँ जी, चेहरे का।
1: लेकिन खुर्रम भाई आज एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ।
0: जी जी पूछिए।
1: ये बताएं कि एक इंसान के चेहरे के जो चेहरे में कितनी मासूमियत होती है,
0: एक इंसान के चेहरे में कितनी मासूमियत होती है
1: जी, और इसके अंदर जो है ना फसाने कितने होते हैं,
0: एक सवाल
1: अंदर जो है ना
0: एक सवाल पूछा ना,
1: चालाकी कितनी होती है
0: इस इंसान के चेहरे में, इतनी मासूमियत होती है, इतने अफसाने होते हैं और इतनी मासूमियत होती है, पता चल गया आपको?
1: अच्छा हाँ, और चालाकी कितनी होती है, ये मेरे जो है ना तीन क्वेश्चन है, ये आप मुझे अभी बता दो, अभी जो है ना फोन करने से पहले।
0: मेरा भाई आपका सवाल ऐसा है कि इतनी मासूमियत को किलो आधा किलो मासूमियत होती है और तीन हाँ। पाव तीन पाव चालाकी होती है और हाँ। और एक छटांग जो है ना वो होती है। क्या पूछा आपने तीसरा सवाल?
1: बस हो सकता है मेरा मैसेज जहाँ तक गया है ना, हो सकता है आपके पास जो ना रिटर्न में कॉल आ गई हो या आ जाएगी आपके पास कॉल।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, ओके।
1: मेरी बात सुने, जब मैं लिंक पे चला जाऊँ ना
0: हाँ।
1: मैं आपसे फरमाइश नहीं करूँगा,
0: ठीक है?
1: एक ही ख्वाहिश है।
0: हाँ बोले।
1: यार आपकी मुस्कुराहट यकीन करे लाखों में, यकीन कर जब आप आ करके जब हंसते हो ना खुल के,
0: अच्छा,
1: और खास तौर पे जब आप जिंदगी से बात करते हो ना, तो फिर तो आपका अंदाज और ही चेंज हो जाता है यार।
0: अरे चलो, बहुत शुक्रिया, आप इतनी तारीफ होगी है, मैं सुर्ख हो गया हूँ, लाल हो गया हूँ।
1: नहीं मैं आपको मस्के नहीं मार रहा हूँ, यकीन करो आप है ही तारीफ के काबिल।
0: अरे बहुत शुक्रिया, तारीफ
1: अल्लाह जिसको इज्जत देता है ना, इज्जत और जिल्लत देने वाली तो अल्लाह की जात है यार।
0: जी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत शुक्रिया मेरे हैदराबादी भाई, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।

0: जी।
1: ओके जी, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: जी जनाब, कौन है, कहां से है मेरे साथ?
0: बेबी बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से।
1: ओके जी, बेबी हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी बेबी, बोलिए, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? काफी अरसे बाद आप आई हैं।
0: आप ठीक हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल फिट फाट।
0: काफी देर से कॉल मिला रही हूँ लेकिन मिल नहीं पा रही थी।
1: हाँ, आज ना कुछ कॉल्स का प्रॉब्लम है, आज कॉल्स कनेक्ट नहीं हो रही हैं कुछ लोगों की, और कॉल्स का बड़े गिले आ रहे हैं कि जी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, सो सॉरी फॉर दैट। जी
0: तो आप
1: बेबी,
0: शायरी पढ़ रही थी तो आपकी इजाजत है तो हम भी शायरी पढ़ सकते।
1: जी जी जी जी सुनाइए।
0: वक्त की डोर थी, वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे। घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे।
1: वाह वाह।
0: और एक और शेर है, वो तजल्ली की शुआई थी जलते हुए पर आईने टूट गए, आईना सरदार के।
1: अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, कमाल, बहुत
0: सही। मैंने सही पढ़ा है क्या चार को?
1: बिल्कुल आपने सही पढ़ा होगा,
0: क्योंकि यही अचार जो थे मुस्तफा जो प्रोग्राम करते हैं, मुस्तफा भाई
1: जी
0: उनके प्रोग्राम में पढ़े थे।
1: अच्छा।
0: गए थे और ऊपर थोड़ी सी बहस हो गई थी अमित भाई की और भाई की।
1: अच्छा, मुज्तबा ने क्या बोला कि आपने सही नहीं पढ़े?
0: नहीं, ये बात नहीं है। अमित साहब ने पहले तो एक दो प्रोग्राम में उनकी काफी तारीफ की थी कि आप बहुत अच्छी शायरी पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी आपकी उर्दू है।
1: अच्छा।
0: फिर उसके प्रोग्राम से उन्होंने काफी उनकी तारीफ की और फिर पहले क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि कुछ दिन का सिलसिला हुआ कि उन्होंने जो है उसी का कहा कि मैं कुछ शर्त लगाता हूँ, कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन हुई कि जो ये गजल पड़ेगा या ये अशार पड़ेगा सही पड़ेगा तो मैं 5,000 इनाम रखता हूँ।
1: अच्छा।
0: तो फिर मुझे बाबा को बोला कि अगर आप सही पढ़ेंगे तो मैं आपको 10,000 दूंगा।
1: अच्छा।
0: तो इस पर उन्होंने ये शेर कहा था लाइक जैसे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था ये लटकी हुई तलवार गिरे। तो अमित भाई कह रहे थे लटकती हुई तलवार गिरे है।
1: अच्छा।
0: और दूसरे शेर में था कि वो कह रहे थे कि जलते हुए पर है, कि वो कह रहे थे कि चलते हुए तीर है। तो इसलिए मैंने आपसे ये अशार का पूछा था कि इनमें से कौन सा लफ्ज दुरुस्त होगा।
1: अच्छा बेबी,
0: एक तो बहस हुई, देखिए वो हमारे
1: तो अच्छा,
0: बहुत अच्छी
1: अच्छा,
0: आज है उनकी उर्दू काफी अच्छी और काफी अरसे के बाद इतना अच्छा प्रोग्राम सुनने को मिला कि उनकी उर्दू बहुत अच्छा, अंदाज बयान बहुत अच्छा और काफी नॉलेज भी है उनके पास।
1: जी जी
0: सब कॉलेज रिस्पेक्टेबल है लेकिन आज भी रिस्पेक्टेबल है।
1: जी जी
0: जाहिर बात है उनके पास एक नॉलेज है तो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना।
1: जी जी
0: ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी थी और बहुत से कॉलर्स को भी शायद ये बात पसंद नहीं आई थी और कई कॉलर्स ने भी कॉल करके इस बात को शेयर किया था।
1: अच्छा,
0: तो मुझे लगता है कि वो शायद प्रोग्राम ही नहीं करेंगे, कल भी नहीं आए, आ जाएंगे क्या आप प्रोग्राम करेंगे?
1: अच्छा बेबी, पहले तो मैं आपकी सारी बातों का ना, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं गाहे बगाहे आपको एक एक करके मैं आपको जवाब दे सकूं। पहले तो ये है कि मैं अपने आप को इतना अच्छा उर्दू बोलने वाला नहीं तसव्वुर करता। ये बात अलग है कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत उर्दू पढ़ी और उर्दू को सीखने की कोशिश भी की और एकेडमीज़ को भी ज्वाइन किया, उर्दू भी सीखी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि शायद मुझे उतनी अच्छी उर्दू नहीं आती जितनी शायद आपको आती होगी या हमीद गुल साहब को आती होगी या मुज्तबा हैदर को आती होगी। लेकिन जहाँ तक मुज्तबा हैदर की बात है तो मैं मुज्तबा को थोड़ा पर्सनली जानता हूँ, तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मुज्तबा हैदर जो हैं वो वाकई में ही, वो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि वो मेरे साथ मेरे कलीग हैं, मेरे आरजे हैं, मैंने उनको पर्सनली बहुत अरसे से जानता हूँ, कोई आई थिंक सो 10-12 साल से जानता हूँ, रेडियो में आने से पहले से जानता हूँ। तो मुज्तबा हैदर की एक कद काठ है, एक शख्सियत है वो इस माशरे के अंदर, और जहाँ से वो हैं वो रेडियो तो एक बिल्कुल उनका एक अलग चैप्टर है जो कि एक बड़ा आई थिंक सो मैं कहूँगा कि उसको बड़ा माइन्यूट सा चैप्टर है। उनको बहुत बड़ी तादाद में लोग सुनने वाले हैं जिस लाइव मजमे में वो पढ़ते हैं, ठीक है, जिस लाइव मजमे में खड़े होके वो बोलते हैं या वो कहते हैं, वो उनको बहुत बड़ी तादाद है। शायद वो इतनी मेरे सुनने वाली भी नहीं है, ना शायद इतने बड़े मजमे को कभी मैंने एड्रेस किया जितना मुज्तबा हैदर ने किया, और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि लाखों के मजमे को मैंने मुज्तबा को वहाँ पर पढ़ते हुए सुना और लोगों ने अपने दांतों में उंगलियां डाली हैं। मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है और मैं गवाह हूँ इस बात का कि मुज्तबा हैदर ने जहाँ जहाँ बोला, जहाँ जहाँ पढ़ा, जहाँ जहाँ परफॉर्म किया, मुज्तबा ने अपनी छाप छोड़ी है। तो मुज्तबा नो डाउट एफएम मनोमन के पास, हमारे पास, हमारे इस गुलदस्ते के अंदर एक बहुत खूबसूरत फूल है, और अल्लाह ताला उसको कायम उदायम रखे, शादो आबाद रखे। आज की जो आपने दूसरी बात की, जहाँ तक मैं मुज्तबा को जानता हूँ, जब जो मैं उसके बारे में जानता हूँ या जितना मेरे पास इल्म है उसके बारे में, वो मैंने आपको बताया, वो तमाम सुनने वालों को बताया कि मुज्तबा का एक चेहरा तो आप यहाँ देखते हैं जो रेडियो पे होता है, उसके अलावा मुज्तबा बहुत बड़ी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से वो बहुत बड़ी शख्सियत है, अल्लाह ताला उसको मज़ीद तरक्कियाँ अता करे। खैर, दूसरी बात जो आपने मुज्तबा की बात की, तो मुज्तबा साहब का आज सुबह मैंने स्टेटस देखा उनके व्हाट्सएप के ऊपर कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दैट्स वाई वो आज नहीं आए यहाँ पे, तो वो जब ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर आएंगे। और तीसरी बात कि हमीद गुल साहब के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमीद गुल साहब को भी मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ, मेरे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, शायरी पढ़ते हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी बात करते हैं और असर रखने वाली बात करते हैं, और शायरी के साथ उनका भी बड़ा शगफ है। तो मैं उसमें तीसरा बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये बात कह सकूं कि ठीक है या गलत है। तो उसको आप जस्टिफाई करने के लिए ये कर सकते हैं कि आप उसको किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पर देखिए या किसी ऑथेंटिक किताब के ऊपर देखिए कि उसमें क्या लिखा जाता है। अगर के जिस तरह अभी रेख्ता है उसके अंदर बड़ी उर्दू की बात की जाती है कि उर्दू किस तरह से दुरुस्त है, या जो रेख्ता के ऊपर लिखा जाता है वो बड़ा नोक जोंक करके, कांट जाट करके लिखा जाता है, वैसे नहीं लिखा जाता है एज़ पर माई नॉलेज, कि वहाँ पर गलत उर्दू नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, अभी आज तक का जो डिजिटल मीडिया है। वैसे किताबों के अंदर से भी आपको ये बात मालूम पड़ सकती है, और बहुत किसी आप किसी और से भी पूछें तो तब भी आपको पता चल सकती है कि लटकी हुई तलवार होता है या लटकती हुई होता है, और दूसरा आपने क्या बोला, जलते हुए पर या जलते हुए तीर, ये तो बात की ना आपने
0: जी।
1: तो ये अगर आप
0: किसी ऑथेंटिक,
1: जी जी,
0: कि मैंने रेक्टर से भी कंफर्म किया है, और यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन जो अदब से रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया में,
1: जी जी,
0: उनसे भी मैंने कंफर्म किया है, तो उन्होंने भी यही बोला है कि लटकी हुई तलवार होता है और जलते हुए पर होता है। ये मैंने कंफर्म किया है, तभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ।
1: अच्छा चलें, अगर आपने कंफर्म किया है तो फिर तो मैं आपको डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा, आप ठीक फरमा रही होंगी। लेकिन इसमें होना ये चाहिए कि देखें, मैं तो हमेशा अपने बारे में ये कहता हूँ कि मैं कभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, और मुझे परफेक्शन ना हो सकती है इंसान के अंदर। देखें, गलती इंसान ही करता है, चाहे वो जितना भी काबिल हो जाए या जितना भी ऊपर चला जाए, गलती की गुंजाइश, आदम ने गलती की, हमारा इस दुनिया में आना ही गलती से है, ठीक है, आदम की गलती की वजह से हम इस दुनिया में हैं, ठीक है, या अगर वो आदम, अगर अम्मा हवा गलती ना करती तो हम जन्नत में होते शायद, ठीक है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में लाया और उसकी वजह क्या बनाई, एक गलती बनाई, ठीक है ना। तो गलती इंसान के खमीर में है कि वो गलती कर सकता है, ठीक है,
0: लेकिन उस गलती के ऊपर, हर इंसान से गलती हो जाती है
1: जी, तो अगर उस गलती के ऊपर, हाँ जी जी, मुझे सुन लीजिए बेबी, मुझे सुन लीजिए,
0: किसी से कम होती है, किसी से ज्यादा होती है
1: जी बेबी, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए।
0: सताओं का पुतला है,
1: जी जी,
0: और ये भी बात एक फैक्ट है, कहते हैं इल्म हासिल करो मेहनत से लेकर लहत तक।
1: जी, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं दुरुस्त हूँ या वो गलत है। ये ना मुज्तबा हैदर साहब को, मेरे दोस्त हैं, मेरे आरजे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर के कोई बात आपकी तरफ से आ रही है या एक्स वाई जी कहीं से भी आ रही है, अगर वो आ रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, अगर वो ठीक है, अगर वो गलत है तो फिर भी आप एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, मैंने बता दिया जो सही बात है, अगर उसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा तो तब भी दैट्स इट। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। खैर, कॉल आपकी बहुत लंबी
0: है, मैं यही चाहती हूँ कि गलत को गलत और सही को सही ही कहा जाए, तो इसके अंदर ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, सब रिस्पेक्टेबल होते हैं
1: जी। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू जी, बहुत शुक्रिया बेबी, आपने कॉल की, बहुत लंबी कॉल चल गई आपकी, मैं आपसे जाना
0: चाहूंगा,
1: थैंक यू जी, बाय बाय। बस ये जज्बात है ना, सेंटिमेंट्स है भाई, और मैंने कोशिश की है कि जी मैं आपके सेंटिमेंट्स को जो है वो कायम उदायम रख सकूं। ओके जनाब, वक्त पूरा हुआ चाहता है और वक्त सभी का पूरा हो जाता है, और चाहे हम जितना भी वक्त ले लें, वक्त में पूरा हो जाना होता है और वक्त पूरा हो ही जाता है, और जहां वक्त पूरा होना होता है वहीं वक्त पूरा होता है। सो आज के प्रोग्राम का वक्त भी पूरा हुआ चाहता है, और दौरान गुफ्तगू दौरान बातचीत अगर गलती को सैफ हुआ चाहता हो तो माफ़ी चाहता हूँ, रब के हुजूर भी माफ़ी खासगार हूँ, आपके हुजूर भी माफ़ी खासगार हूँ। अगर ज़िंदगी रही, अगर सांसों में वफा की, तो आपके साथ मुलाकात होगी आने वाले पीर को। और अगर आप मुझे प्रोग्राम में कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई बात अगर आपको पसंद नहीं आई, उसके ऊपर आपको एतराज़ करना चाहते हैं जो आप लाइव नहीं कर सके, या आप कमेंट नहीं करना चाहते, या आप मैसेज नहीं करना चाहते, सो डू लेट मी नो ऑन माय सोशल मीडिया हैंडलर ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, दैट इज़ kb.baig। और अगर आप कोई मौजू बताना चाहते हैं कि प्रोग्राम में कोई अच्छी चीज़ आपको पसंद आई है, उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं पसंद आई उसके हवाले से बात करना चाहते हैं, कोई अच्छी चीज़ डलवाना चाहते हैं प्रोग्राम में, एड ऑन करवाना चाहते हैं कोई चीज़, सो डू लेट मी नो, kb.baig इंस्टाग्राम हैंडलर। और मुझे दीजिए इजाज़त, KB साइनिंग आउट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सलाम के बाद, टाटा।

बाद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत आरजे मुश्तबा भाई, जो कि रास्ते में हैं, क्योंकि आज यहाँ पे इस्लामाबाद में थोड़ी सी ट्रैफिक जाम है मैच की वजह से, जो क्रिकेट टीम हमारी आई हुई है उसकी वजह से, तो इसलिए वो रास्ते में थोड़े से फंस गए हैं, लेट हो गए हैं, लेकिन वो आ रहे हैं अभी, उनका मैसेज आया है, तो थोड़ी ही देर में वो आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। आप लोग तब तक ये खूबसूरत सॉन्ग्स सुनते रहें और हमारे साथ रहें, थोड़ी देर में आपको मुश्तबा भाई का शो सुनने को मिलेगा।